हर कोई कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता, लेकिन सच तो यह है कि संकट के समय कोई साथ नहीं देता, तब किसी न किसी रूप में भगवान ही साथ देता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

एक बात पानी से सीखी जा सकती है, छोटी छोटी नदियां शोर मचाती हैं, परंतु महासागर शांत रहता है। ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवत गीता हमें स्वास्थ्य के बारे में भी एक बहुत सुंदर बात बताती है। स्वास्थ्य शब्द का अर्थ क्या है? स्व में स्थित होना। इसीलिए अगर स्वास्थ्य सही से समझना है तो स्व की परिभाषा को समझना आवश्यक है। भगवत गीता हमें बताती है कि जो हमारा शरीर है ये एक समय बाद समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये शरीर हम नहीं है, ये केवल एक गाड़ी है और इसके ड्राइवर हम हैं, जो कि आत्मा है। अर्थात कि हम स्व से समझ सकते हैं कि स्व हम आत्मा के प्रकार हैं। सो भगवत गीता हमें बताती है स्वास्थ्य की सही परिभाषा। स्वास्थ्य अर्थात स्व में स्थित होना। स्व में स्थित होने के लिए हमें स्व को जानना बहुत आवश्यक है। स्व अर्थात मैं। अब ये मैं क्या है? अगर मैं को शरीर माने तो एक दिन ये शरीर समाप्त हो जाएगा। मैं को मन बुद्धि माने तब भी जीवन के समाप्त होने पे ये समाप्त हो जाएंगे। परंतु अगर इस स्व को हम आत्मा माने, जो कि कभी जिसका नाश नहीं होता, ऐसी आत्मा सही में स्व है। तो स्व में स्थित होने का अर्थ है कि हम आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करें, अर्थात कि अपने को जीवन के कर्तव्यों के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक चेतना पर भी कार्य करें। इससे हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, तनाव से मुक्त रहेंगे। हरे कृष्णा।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवत गीता हमें एक बहुत सुंदर बात बताती है कि हमारे जीवन में तनाव आता क्यों है और उससे बच कैसे सकते हैं। तनाव हमारे जीवन में इसलिए आता है क्योंकि हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने का प्रयास में लगे रहते हैं। जैसे कि एक मछली से आप कहेंगे पेड़ पे चढ़ जाओ तो उसकी प्रकृति नहीं है। इसीलिए अगर आप प्रकृति के विरुद्ध कार्य करेंगे तो आपके जीवन में तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी बढ़ता चला जाएगा। परंतु जैसे ही आप अपनी प्रकृति में यानी स्वयं को जानें और उसके अनुसार अगर अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करें तो आप तनाव से पूर्ण रूप से मुक्त होकर भी कार्य कर सकते हैं। कितना कार्य? जितना चाहे आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो आप हमेशा अपने कार्य को 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे नहीं, जितना चाहे कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।

0: 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो।

नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सब सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा और काशी है।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: सो वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University।
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।
4: राम राम, दो सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ नाचीज हरदिल अजीज गगन, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता हूँ, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूँ अपने इस खास प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें होती हैं। आज मेरे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पढ़ाने का जब जिक्र हो ही जाता है तो जाहिर सी बात है कि दिमाग में एक छवि बन जाती है कि कोई हमारे साथ मेंटर जुड़ रहे हैं, गुरु जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर जुड़ रहे हैं। तो चलिए, मैं ज्यादा आपको इंतजार नहीं कराता, लेकिन और भी बहुत कुछ क्वालिटीज हैं उनके पास, जैसे कि वो 3 books उनकी पब्लिश हो चुकी हैं, मिसेस इंडिया ब्यूटी क्वीन 2014 में टॉप 10 में आप रह चुकी हैं, और आप हैं मेरे साथ डॉक्टर प्रिया सचदेवा। तो मैम, सुनो शारदा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
6: थैंक यू सो मच गगन जी फॉर हैविंग मी हियर।
4: ये मेरा सौभाग्य है कि आपसे मेरी मुलाकात हो पा रही है, बातचीत हो पा रही है, और अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़कर। मैंने आपके बारे में तारुफ कराया है अपने लिसनर्स को, मुझे लग रहा है कहीं कम तो नहीं है या कुछ और आपने छुपा के रखा हुआ है।
6: गगन जी, ये तो आपका बड़प्पन है, आपने इतना कुछ बताया मेरे बारे में, बट एट द सेम टाइम यही मैं शेयर करना चाहूंगी कि शुरू से लेकर अंत तक मैंने बहुत ही मेहनत और बहुत ही शिद्दत से अपनी चीजों को चाहा है, और इस शिद्दत ने मुझे यहाँ पे लाके खड़ा किया है, और कई सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा है ये सब। तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने छोड़ी हो, उसमें गाना गाना, उसमें शोज करना, उसमें पढ़ाई करना, उसमें फर्स्ट आगे दिखाना, उसमें रोल मॉडल बनना दुनिया के लिए। तो ये सब कुछ मैंने करके बहुत ही तरीके से देखा, अंदर घुस के देखा कि वाकई जन्नतें होती क्या हैं।
4: एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो ये जो सफर आपका रहा है, जैसे अभी आपने कहा कि बहुत सालों की मेहनत है, कितने सालों की मेहनत है, कब आपको लगा कि मुझे इस फील्ड में जाना है, कब आपको लगा कि मुझे एक प्रोफेसर बनना है, कब आपको लगा कि मुझे राइटिंग में जाना है, बुक्स लिखनी है?
6: छोटे होते से बड़ा अरमान था कि मैं सर्जन बनूं। तो तब डॉक्टर खेला करते थे, छोटे थे, 11th 12th में मेडिकल लेने की कोशिश की, बट हालात ऐसे बने कि कॉमर्स ली। उसके बाद कॉलेज करने वाले थे, कॉलेज करे तो उसके बाद लगा कि नहीं, अब कुछ अपना शुरू करते हैं, या क्योंकि हमेशा से ये जरूर था कि प्रिया सचदेवा से पहले डॉक्टर लगना चाहिए। तो पेरेंट्स ने बोला कि नहीं, अभी 10 years रुकते हैं, 10 years रुकना पड़ेगा, मेडिकल लाइन बहुत ही, यू नीड टू स्टडी वेरी हार्ड, बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो जर्नी वहां से स्टार्ट हुई और आज आप सबके सामने ही है। करते करते करते करते उसमें बस लोगों का साथ मिला, बहुत अच्छे गुरुओं का हाथ मिला, और बहुत आशीर्वाद रहे साथ में। वो कहते हैं ना, जब आपको किसी चीज की तहे दिल से चाह होती है तो आपके सामने गुरु अपने आप आ जाता है।
4: बहुत खूब, बहुत खूब।
6: तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ, और बहुत अच्छे गुरुओं ने मुझे बहुत लंबे समय तक अच्छी गाइडेंस में, यहाँ तक पहुँचाया है।
4: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत।
6: तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज भी वो जहाँ भी हैं, अगर वो सुन सकते हैं तो उनको और जितने लोगों ने प्यार दिया और अपना साथ दिया, रातों को जाग जाग के वो पढ़ाइयाँ की हैं जहाँ तक अब आज हम पहुँचे हैं।
4: नाइस नाइस। गुरु और शिष्य का जो एक संबंध है, जो बॉन्डिंग है, उसके बारे में मैं आपसे जरूर जानूंगा, क्योंकि आपने खुद कहा कि मुझे गुरु बहुत अच्छे मिले जिसकी वजह से आप इस मुकाम तक पहुंच पाए। चूंकि आप एक प्रोफेसर हैं, बच्चों से आपका सामना रोज रहता है, तो आपके सामने जो आपके स्टूडेंट हैं उनके साथ कैसी ट्यूनिंग है, मैं इस सवाल का जवाब आपसे जरूर लूंगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। लिसनर्स, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। और प्रोग्राम में आपका अपना वही बिंदास, सुबह बिंदास बोल बिंदास बातें होती हैं, मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10। जब अच्छा लगता है सुनकर, ये पता चलता है कि हमारे जो टीचर हैं वो भी मल्टी टैलेंटेड हैं, बहुत सारे उनके पास गुण हैं। और खासकर जब चर्चा होती है तो वो सारी बातें खुलकर आती हैं कि ये इस फील्ड में मैंने हाथ आजमाए हैं, मैंने ये किया है, मैंने बुक भी मेरी पब्लिश रही है। तो ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर प्रिया सचदेवा, मैं आपको बताना चाहूंगा लिसनर्स हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप जो कि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर प्रिया सचदेवा मिसेज इंडिया ब्यूटी क्वीन 2014 के टॉप 10 में रह चुकी हैं, 3 बुक्स आपकी पब्लिश हुई हैं। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर प्रिया आपसे बात हो रही थी कि जो एक संबंध है गुरु का और शिष्य का, जो तालमेल है, आपके साथ बहुत अच्छा रहा। आपका किस तरीके से तालमेल रहता है आपके अपने स्टूडेंट्स के साथ?
1: गगन जी, जब मैंने शुरू किया था तो मैंने एक पोस्ट ग्रेजुएशन में कर चुकी थी, तो दूसरी करने में यूनिवर्सिटी गई थी, तो तब मैंने सोचा था रेगुलर करूंगी। तो जब वो ज्वाइन करी तो उसमें भगवान की दया से 100 में से सिर्फ एक ही नंबर कम था। तो जब वो ज्वाइन किया और वहां पर ऐसे हुआ तो यूनिवर्सिटी से कॉल आ गई। तो तब लेक्चरर अपॉइंट हुआ करते थे जमाना पहले, तब प्रोफेसर और इतना एडवांस स्टेट नहीं था। तो वहां पर शुरू किया अपना करियर, तो वहां पर करते करते फैशन शोज में जाना शुरू किया एज अ फैकल्टी। वहां पर जबरदस्त शूटिंग होती थी तो लगता था शायद बच्चे वैसे ही शोर मचाते हैं। तो करते करते करते करते मुलाकात होने लगी जो इंडस्ट्री के लोग हैं, उन्होंने बुलाना शुरू कर दिया कि आप मॉडलिंग करो, आप यहाँ आओ, आप हमारे एक एक दो दो दिन के वो जो शूट्स होते हैं उनमें आके आप वो करो, सिर्फ अपना यू नो पिक्चर्स शेयर कर दो या फिर आप एक छोटा सा एक्ट कर दो। तो फिर एक सीरियल भी मुझे

0: मिला इंदिरा का
1: nice.
0: तो लेकिन वो मैं कर नहीं पाई उस टाइम पे भी क्योंकि शायद भगवान को मेरे लिए टीचिंग ही बढ़िया लगी.
1: nice.
0: उसके बाद करते करते फैशन शोज करे तो वहां पर अपॉर्चुनिटी मिली जब मैं मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड में सेलेक्ट हो गई, मिसेज इंडिया इंटरनेशनल में सेलेक्ट हो गई, मिसेज यूनिवर्स में सेलेक्ट हो गई. फिर फाइनली जो मैंने किया वो मिसेज इंडिया ब्यूटी क्वीन था क्योंकि सबकी डेट्स एक साथ में थी.
1: okay. किसी एक का चुनाव करना था, राइट?
0: तो वो किया, उसमें टॉप 10 में थी जो कि मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन पल थे और उसके थ्रू बहुत अच्छा एक्सपोजर रहा. और उसके बाद अब फिर उसके बाद 3 किताबें अपनी मैंने लॉन्च की और पढ़ते पढ़ाते करते कराते बहुत अच्छा संगम रहा नई नई चीजों का और पढ़ाई का.
1: अच्छा डॉक्टर प्रिया, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि चूंकि हमारा जो कोर्स है, हमारा जो स्कूल है, ग्लैमर इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता है. यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं, मॉडलिंग की दुनिया में जाते हैं, कोई एंकर बनता है, कोई आरजे बनता है. चूंकि आप ब्यूटी क्वीन रह चुकी हैं और आपने इसमें पार्टिसिपेशन अपना दिया है, तो किन किन चीजों से लोगों को गुजरना पड़ता है, किस तरीके से अपने ऊपर काम करना पड़ता है, और वो आप हमारे लिसनर्स को बताइए ना प्लीज.
0: ऐसा होता है गगन जी, जब हम इस इंडस्ट्री में आते हैं तो ये इंडस्ट्री बड़ी फैसिनेटिंग होती है, बड़ी इल्यूजनरी होती है. हमें लगता है कि हम यहाँ आकर पता नहीं क्या कर देंगे, लेकिन जब हम इंडस्ट्री में एक्चुअल में जाते हैं तो देखते हैं कि जिंदगी कुछ और है.
1: राइट राइट.
0: लेकिन ये मैं जरूर कहूंगी कि जहाँ चाह वहाँ रहा, तो तू जो चाहे अगर तेरे कदमों में हो शिखर तो खुद पर यकीन कर.
1: क्या बात है, बहुत खूबसूरत.
0: तो अगर आपकी अगर आपके अरमानों में, चाहत में इतनी शिद्दत है, तो आप आरजे हो या आप कोई एक्टर हो, आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता.
1: बहुत खूबसूरत.
0: तो जिस एक्सटेंड तक आप मेहनत करेंगे जिस भी एस्पेक्ट में मीडिया की, तो ऑब्वियसली आपको उसमें
1: रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे.
0: और जब मिलना शुरू होगा तो ऑटोमेटिकली वो चीजें आपको इंटरेस्ट देंगी, आपको बढ़ाएंगी और आपको जिताएंगी.
1: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत. लिसनर्स, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहे कुछ भी करना चाहते हैं, चाह रखना बहुत जरूरी है. और जहाँ चाह होती है तो ईश्वर की दुआएं, शुभकामनाएं, बड़े बुजुर्गों का साथ, दोस्तों का प्यार, जब ये सारी चीजें मिलती हैं तो निश्चित तौर पर उसका जो रिजल्ट आता है, परिणाम बहुत सुखद होते हैं, वो आपके फेवर में होते हैं. और अपने ऊपर तो काम तो करना ही पड़ेगा भाई, रिसर्च वर्क करना पड़ेगा, जानना होगा, समझना होगा कि मुझे आरजे बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे मॉडलिंग के क्षेत्र में जाना है तो किस तरीके से अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा. तो ये सारी बातें हमारे साथ हो रही हैं, डॉक्टर प्रिया सचदेवा जुड़ी हुई हैं.
0: मैं यही कहना चाह रही थी कि जब मैंने मॉडलिंग एक्चुअली में की तो आप सोच भी नहीं सकते, आई वॉज टू फैट. आई वॉज हैविंग नियर अबाउट 75 kg ऑफ वेट. नो वन कैन थिंक ऑफ बींग अ मॉडल एट दैट स्टेज बिकॉज आई जस्ट डिलीवर्ड माई फर्स्ट बेबी. पर उसके बाद भी इतनी मेहनत करके आई गॉट इन फर्स्ट 10. दैट वाज एन अचीवमेंट.
1: ओह एक्सीलेंट एक्सीलेंट.
0: सो इन एवरी एस्पेक्ट इफ यू सी इट वाज अ हार्ड वर्क व्हिच एक्चुअली पेज.
1: राइट राइट, एब्सोल्युटली राइट. सो लिसनर्स, मैं भी वही बात कह रहा था, इस बात का सार यही निकल कर आता है कि अपने ऊपर अगर आप वर्क करेंगे या अच्छे टीचर आपको मिल जाएंगे तो निश्चित तौर पर रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता. फिलहाल एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, आप कहीं जाएगा मत, स्टे ट्यून्ड ऑल योर सुनोशादा 90.8 FM. प्रोग्राम है आपका अपना भाई बिंदास, सुबह बिंदास बोल बिंदास बातें, मेरे यानी गगन के साथ.

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन आपके साथ, और मेरे साथ स्टूडियो में आज मेरे खास मेहमान हैं, गेस्ट हैं, डॉक्टर प्रिया सचदेवा। तो डॉक्टर प्रिया सचदेवा, एक बार फिर से आपका सुनो शारदा 90.8 FM पर बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी।
0: मैम, आपसे मेरी जो बातें हो रही थी कि जहाँ चाहा वहाँ रहा, बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी लाइनें हैं। ये सच है कि जिंदगी इम्तिहान लेती है, लोग आपका इम्तिहान लेते हैं, और अगर आप एक दृढ़ निश्चय के साथ चलते हैं तो मैं समझता हूँ कि दिक्कतें परेशानियां आती जरूर हैं, लेकिन आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। बुक्स के बारे में थोड़ा आप मुझे बताइए कि आपने जो बुक्स पब्लिश हुई हैं, आपकी तीन बुक्स, जैसे कि आपने हमें बताया, न्यू मीडिया, एडवर्टाइजिंग एंड अफेक्टिवनेस, तो क्या सोच के आपके दिमाग में ये टॉपिक आए कि मुझे ये लिखना है, और क्या अभी आप कर रहे हैं बुक्स के रिगार्डिंग?
1: मैंने जब अपनी PhD कंप्लीट की तो वो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए भी और मेरे पूरे ग्रुप के लिए, क्योंकि मैं ही थी जिसने बहुत कम समय में बहुत अच्छे नंबरों से उस चीज़ को हासिल किया। चैलेंज ये था कि उस टाइम अगेन थोड़ा सा फैमिली कॉन्स्ट्रेंट्स थे, जिसकी वजह से एकदम से वापस जॉइनिंग बैक नहीं कर सकती थी। तो मैंने उस टाइम को भी यूटिलाइज़ किया, इंस्टेड के मैं उस टाइम को ऐसे वेस्ट कर देती, मैंने उस दौरान 6 महीने में मैंने 3 किताबें लिखी, और मैंने वो तीन किताबें
0: ओह माय गॉड, बहुत बड़ा टास्क, और इतने आसानी से ये कैसे कर पाई? अनुभव की वजह से?
1: अनुभव भी, और काफी मेहनत और चाह थी, फिर यही कहूंगी, चाह बहुत थी कि ऑथरशिप हो, अपनी हो। तो जब सबको देखा करती थी, गुरुओं को, कि उनकी किताबें छप रही हैं, तो दिल करता था कि अपनी भी हो। तो जब अपना लिखना शुरू किया तो सारे वो लेटेस्ट चीजें जो आने वाले समय में बच्चों को फायदा देंगी। मीडिया एक ऐसी इंडस्ट्री है, ऐसी एक लाइन है जिसके अंदर हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है, तो बच्चों को ये समझने में बहुत आसानी होगी कि हर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एडवर्टाइजिंग की किताब लिखी थी, तो उसमें मैंने जिक्र किया है कि आने वाले टाइम में ये जो एड्स हैं ये क्या उनके लिए लेकर आएंगी और किस तरह की हो जाएंगी वो।
0: मतलब समझाने, क्या लेकर आएंगे? रोजगार की बात कर रहे हैं आप या नजरिया
1: की बात? 10 साल के बाद इसका नजरिया उनके लिए क्या होगा? तो जो पर्सपेक्टिव्स आज से 10 साल के बाद वो सोचेंगे, वो मैंने कोशिश की है कि अपनी समझ से अपनी बुक में रखूं। अब जैसे हमारे जो ये बच्चे हैं, ये मिलेनियल्स हैं, तो अब इनके क्या शौक हैं, क्या ढंग हैं, ये गैजेट्स के साथ पैदा हुए हैं, गैजेट्स ही यूज करते हैं, जबकि हमारी एजुकेशन बहुत डिफरेंट थी। तो आज आने वाले टाइम में ये जो नया मीडिया है, ये उसको कैसे चेंज कर देगा, और उनके लिए क्या चैलेंजेस होंगे, क्या थ्रेट्स होंगे, और किस आसानी से वो अडॉप्शन कर पाएंगे उन चीजों का, ये सब मैंने अपनी किताबों में।
0: बहुत खूबसूरत। जितना मैं आपसे बात कर पाया हूँ और जितना मैं समझ पाया हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि इस पे एक डिबेट हो सकती है या इस पे एक और चर्चा हो सकती है आपके साथ। वाकई रियली नाइस टॉक टू यू डॉक्टर। फिलहाल आप मुझे ये बताइए कि फिटनेस के बारे में आप मुझे बता रहे थे, और मैं ये जानना भी बहुत जरूरी है मेरे लिए कि किस तरीके से एक बंदा अपने आप को फिट रख सकता है, किस तरीके से वो अपने आप को आगे लेकर जा सकता है, और आपका फिटनेस का जो राज है वो देख के लगता नहीं कि बस आप मुझे यही बता ही दीजिए कि फिटनेस का राज क्या है।
1: मैं तो यही कहूंगी गगन जी कि फिटनेस के लिए सबसे पहले आपका पॉजिटिव माइंड होना बहुत जरूरी है, और दूसरा आपको अपने आप को ये समझाना बहुत जरूरी है कि जब आप व्यायाम करते हैं, रोज करते हैं, तभी भी कई लोग होते हैं जो अपना वजन कम नहीं कर पाते, उनको 10 तरह की बीमारियां होती हैं। वो इसलिए होती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनका फोकस एक चीज के ऊपर होता है। आपको अपनी मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल हेल्थ, सब चीजें एक साथ में देखनी होती हैं। तो अगर आप अपना डाइट कंट्रोल कर रहे हैं तो उसके साथ एक्सरसाइजेस भी जरूरी हैं, एक्सरसाइज के साथ वर्क लाइफ बैलेंस भी जरूरी है। तो अगर आप पर्सनल बैलेंस नहीं लेके चल रहे, सिर्फ वर्कहोलिक हो, तब भी दिक्कत है, क्योंकि भगवान ने ये जो सृष्टि रची है ये सब बैलेंस के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आप अपने सारे एस्पेक्ट्स को, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, सारे एस्पेक्ट्स को अगर आप बैलेंस करेंगे, तो आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सरसाइजेस, और आप अपने जिमिंग्स पे, अपना वर्क लाइफ बैलेंस पे ध्यान देंगे, तो ऑफकोर्स आप मुझसे भी बेटर फिट होंगे।
0: बहुत खूबसूरत। यानी कि लिसनर्स, कहने का मतलब यही है कि इस बात का अगर हम सार निकालें तो संतुलन बनाना बहुत जरूरी है, तालमेल बनाना बहुत जरूरी है, भी है, चाहे वो पढ़ने पढ़ाने की बात हो, खेलने की बात हो, फिटनेस की बात हो, अति अगर किसी चीज की हो जाती है वो कहीं ना कहीं हानिकारक होती है, हार्मफुल होती है हमारी सेहत के लिए। फिलहाल एक और छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम आपको मिलेंगे, यहीं आप कहीं जाएगा मत। बहुत ही खूबसूरत गाना है कुड़ी मैनू कहंदी, हार्डी संधू की आवाज में ये गाना हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुनो शारदा 90.8 एफएम, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। मेरे साथ स्टूडियो में आज खास मेहमान हैं, जो कि मिसेज इंडिया ब्यूटी क्वीन 2014 में आपने पार्टिसिपेट किया, टॉप 10 तक आप पहुंची, डॉक्टर प्रिया सचदेवा। सो डॉक्टर प्रिया सचदेवा, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
0: आपकी बातों में मुझे एक चीज अच्छी तरीके से समझ में आ गई है कि इंसान को जमीन से जुड़े रहना बहुत जरूरी है, हवा में नहीं उड़ना चाहिए। अगर आपने कोई कंपटीशन जीत भी लिया है और आपके जो जज्बात हैं वो काबू में है, बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज कहते हैं ना कि छोटी सी ख्वाहिशें अगर इंसान की पूरी हो जाती है तो वो फैल जाता है, आम भाषा में अगर हम इस बात को ऐसे रखें। तो साथ ही साथ आपने ये भी हमें रखा कि डिस्कस किया कि गुरु और शिष्य का जो तालमेल है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि, और 19 साल का लगभग आपका एक्सपीरियंस है एकेडमिक का, तो ये जो तालमेल है आपको लगता है कि पहले जैसा रहा है या कुछ और बदलेगा? कहीं ना कहीं हम सम्मान में देखते हैं कि टीचर की बात स्टूडेंट्स नहीं सुनते, स्टूडेंट्स के साथ टीचर की कोऑर्डिनेशन जो है वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ाता हुआ नजर आता है। पहले के समय को अगर हम देखें तो इतनी अच्छी बॉन्डिंग हुआ करती थी कि ऐसा लगता था कि मतलब कुछ कह नहीं सकते कि गुरु के चरणों में हम लोट जाया करते थे, गुरु ने जो कह दिया उस बात को मतलब सचितार्थ है। तो आपको क्या लगता है कि कितना समय बदल चुका है और क्या बदलेगा?
1: मुझे लगता है चाहे वो बच्चे हैं या चाहे बड़े हैं, हर इंसान में कुछ नायाब होता है सीखने के लिए। अगर जैसे हम गुरु हैं लेकिन कुछ चीज़ें हम भी बच्चों से सीखते हैं, तो बच्चों के साथ जब हम तालमेल बिठाते हैं, मुझे बाकियों का तो नहीं पता बट अगर मैं अपना एक्सपीरियंस कहूँ तो मैं यही कहूँगी कि मैं बच्चों को समझने की पूरी कोशिश करती हूँ, और बच्चों ने भी काफ़ी हद तक इतने सालों में बहुत बच्चे पढ़ाए, बहुत बच्चों को गाइड किया, उनकी मेंटर भी रही, उनकी उनको गाइड भी करती रही। तो मैंने यही देखा कि अगर आप बच्चों के एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करें तो चीज़ें काफ़ी सिंपल हो जाती हैं, इंस्टेड के अगर हम इम्पोज करें उनको कि ये चीज़ें होनी चाहिए, तो वो चीज़ें आज के टाइम में नहीं चल पाती, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत अवेयर हैं, बच्चे बहुत समझदार हैं, बच्चे बहुत प्रोग्रेसिव हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप जिस फील्ड में उनको चाह रहे हैं वो उसी में ही राइज करें, उनके जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको पॉलिश करना एक टीचर का मैं तो कहूँगी धर्म होता है, कि उनको समझना, उनकी काबिलियत को समझना और किस एस्पेक्ट में वो काबिल हैं, उनको पॉलिश करना एक मेंटर की सबसे बड़ी खूबी होती है।
0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत आपने इस सवाल का जवाब दिया जो मैं आपसे जानना चाह रहा था। कि फिर भी हम यही कहेंगे कि लिसनर्स, तालमेल होना बहुत जरूरी है, ट्यूनिंग अगर आपकी जबरदस्त है आपके टीचर के साथ, टीचर के आपके साथ, तो निश्चित तौर पर जो आपके काम है वो बिल्कुल नहीं रुकेंगे। मसलन चाहे वो नंबर की बात हो, प्रोजेक्ट्स की बात हो, कुछ भी कोई बात क्यों ना हो, कभी कभी टीचर ऐसे भी मिल जाते हैं कि पर्सनल लाइफ के सजेशन भी आप उनसे मांग रहे होते हैं कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैडम प्लीज आप मुझे गाइड करिए।
1: मुझे तो ऐसा लगता है गगन जी कि शायद बच्चों के साथ आपकी जिंदगी जुड़ जाती है, क्योंकि आप उनके साथ माने ना माने कहीं ना कहीं उनकी कुछ सीखें जो उन्होंने इम्बाइब करी या आपने उनसे ली, वो आपके साथ कहीं ना कहीं जिंदगी भर चलती है।
0: बेशक बेशक, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और जब हम ना समझ होते हैं तो उस वक्त हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं, लेकिन जब हमें समझ आती है तो हमें वो टीचर याद आते हैं, हमें वो टीचर वाले जो दोस्त हैं वो याद आते हैं कि यार सर या मैडम हमें बहुत अच्छी वो गाइडेंस

0: दिया करती थी, हमें बताया करती थी कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा। तो खैर डॉक्टर प्रिया सचदेवा आप हमारे स्टूडियो आई, आपने बहुत सारी बातें पर्सनल लाइफ के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में, अपने स्कूल के बारे में, कॉलेजेस के बारे में आपने हमारे श्रोताओं को बताया। इस बात के लिए तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जाते जाते मैं एक छोटा सा संदेश आपसे जानना चाहूंगा, ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं यही कहना चाहूंगी कि तू जो चाहे अगर तेरे कदमों में हो शिखर, तू खुद पर यकीन कर।
0: यकीन कर, यकीन कर, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। कहते ना कि खुद पर और खुदा पर भरोसा है तो निश्चित तौर पर आपको मंजिल मिलेगी जरूर। और जिस तरीके से मैडम ने जो बात कही, एक अनुभव के आधार पर ये बातें आपके सामने रखी हैं, आप कोशिश करते जाइए, प्रयास करते जाइए और निश्चित तौर पर सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती, लहरों से डरकर नौका कभी पार हुआ नहीं करती। तो डॉक्टर प्रिया सचदेवा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी।
0: सो लिसनर्स, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताइएगा जरूर। इसके अलावा 90.8fm@sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं। फिलहाल मुझे लेनी होगी आपसे अनुमति, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, ऐसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM। टाटा बाय, टेक केयर।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: आज का पाठ है साफ सफाई रखना, दिमागी बुखार से बचना। तुम रोल नंबर एक,
1: साफ सफाई हो भरपूर, सुअर बाड़े घर से दूर।
0: अरे वाह। नंबर दो,
2: मच्छर चूहे और छछूंदर आने ना दो घर के अंदर।
0: शाबाश। नंबर तीन,
1: बंद करो खुले में जाना, हर घर शौचालय बनवाना।
0: बढ़िया। रोल नंबर चार,
3: शौच करने या कराने के बाद साबुन पानी से धोना हाथ।
0: अरे वाह। तुम
1: हैंड पंप के आसपास से सब गंदगी निकालो, पीने वाले पानी में क्लोरीन की गोली डालो।
0: बिल्कुल ठीक। दिमागी बुखार जानलेवा है, ये ज्यादातर गंदगी से फैलता है। गांव और घर में साफ सफाई रखकर इससे बचा जा सकता है। चलो अब सब बच्चों के लिए ताली बजाते हैं।
4: बच्चे तो ये बात जानते हैं, आप भी जान लीजिए।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

जिंदगी, म्यूजिक प्रोड्यूस्ड एंड अरेंज्ड बाय रुहान मलिक, लिरिक्स बाय साकिब नबी, ओनली ऑन सुरुषाता 90.8 FM। जिंदगी।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

90.8 FM पर मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुपर शारदा 90.8 FM।

0: और डब्बा ले आ। बेटा जल्दी आ, स्कूल को लेट हो रहा है।
1: आए पापा। क्या पापा जगह जगह थूकते रहते हो?
0: वो
1: मैं अपने नए नए दोस्त भी बनाऊंगी। पापा
2: क्या हुआ बेटिया?
3: डॉक्टर साहब
4: आपकी बेटी को टीबी है और ये आपके ही देन है।
5: मैंने ऐसा क्या कर दिया?
1: पापा आज से आप एक प्रॉमिस करो कि आप थूकोगे नहीं।
3: वादा करता हूँ बेटिया, अब ऐसे कभी नहीं थूकूंगा, प्रॉमिस।
4: पब्लिक प्लेसेस पर थूकना बंद कीजिए, अपनी बुरी आदतें बदलकर एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण कीजिए।
6: बेटर लेट देन नेवर। तो देर भले हो गई हो लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए।
7: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
8: The world is here.

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.

वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरुशारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:25 हो चुके हैं। हमारे आसपास क्या खास है उसके बारे में जान लेना, समझ लेना बहुत बहुत बहुत जरूरी है। फिलहाल दिल्ली NCR में मौसम का जो मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में दिल्ली NCR में क्या खास है, मौसम क्या कह रहा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्रेटर नोएडा और आसपास के यानी कि दिल्ली NCR के क्षेत्र में उमस भरी गर्मी के साथ साथ आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। और यहाँ का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है यानी कि 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। ह्यूमिडिटी की मैं अगर बात करूं तो यानी कि उमस जिसकी वजह से लोगों की तबीयतें दिक्कतें परेशानियां उनके सामने आ रही हैं, तबीयत खराब हो रही है। तो हवा में जो नमी करीब 71% से 75% तक बनी हुई है और जिससे दिन भर उमस महसूस होगी। और चेतावनी यानी कि अलर्ट किया जाता है कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली NCR सहित कई राज्यों में मौसम विभाग यानी कि IMD ने बारिश और गतिविधि को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। अब बात करते हैं ट्रैफिक की जो एडवाइजरी है वो क्या कह रही है। जाहिर सी बात है कि 15 अगस्त का समापन हो चुका है, कांवड़ यात्रा भी समाप्त हो चुकी है, लेकिन सच बात तो ये कि सावन का महीना चल रहा है। तो ऐसे में अपनी सेहत का ख्याल रखिए, ट्रैफिक का भी ख्याल रखिए। ऑन रोड जब आप आ जा रहे हैं तो आपके पास कागजी कार्रवाई पूरी होनी चाहिए और डिजिट लॉकर में भी आपके कागज कंप्लीट होने चाहिए। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे ट्रैफिक की अपडेट्स के बारे में, डायवर्जन के बारे में। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन सुरशारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। 9:27 हो चुके हैं, 17 तारीख, गुड मॉर्निंग, मैं गगन आपके साथ सिर्फ सुरशारदा 90.8 FM पर। वक्त एक छोटे से ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनने और सुनाने का, लेकिन मन कर रहा है कि उससे पहले मैं ट्रैफिक की अपडेट आपको दे ही दूं। तो सुनने में ये आ रहा है कि बॉर्डर पर चेकिंग यानी कि नोएडा दिल्ली को जोड़ने वाला जो चिल्ला बॉर्डर है, DND फ्लाईवे और कालिंदी कुज पर सुरक्षा कारणों से जो सघन चेकिंग है वो अब सामान्य हो गई है। यानी कि पीक आवर्स के दौरान दिल्ली में प्रवेश करने वाले जो रास्ते हैं, रास्तों पर हल्का थोड़ा सा जाम आपको मिल सकता है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट गौर चौक की अगर हम बात करें तो गौर चौक यानी कि नोएडा एक्सटेंशन पर जो अंडरपास निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक डायवर्जन और वाहनों का जो दबाव है वो बना हुआ है और वाहन चालक यहां से गुजरते समय अतिरिक्त समय लेकर चले हैं। बात करते हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की, यानी कि कांवड़ यात्रा की जो पाबंदियां थी वो अब समाप्त हो चुकी हैं। अब एक्सप्रेसवे की सभी जो लेन है पूरी तरह से सामान्य यातायात के लिए खोल दी गई हैं और भारी वाहनों के लिए अपडेट ये सामने आ रही है। दिल्ली NCR में सामान्य दिनों के नो एंट्री नियमों के तहत भारी मालवाहक वाहनों को केवल तय सीमा के अनुसार ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है और सुझाव दिया जा रहा है पैसेंजर्स को कि मेट्रो का उपयोग करें। यानी कि सड़कों पर जाम से बचने के लिए नोएडा ग्रेटर नोएडा एक जो एक्वालाइन है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्लू लाइन का भी उपयोग करना आपके लिए बेहतर विकल्प होगा। और अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी महसूस होती है तो जो हेल्पलाइन नंबर है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 9971009001। एक बार फिर से बता देता हूं, 9971009001 पर आप कॉल कर ट्रैफिक की एडवाइजरी के बारे में जान सकते हैं और हेल्पलाइन नंबर भी यही है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ सिर्फ सुरशारदा 90.8 FM पर। ब्यूटीफुल ट्रैक, चाहे तो वॉल्यूम अप कर सकते हैं लेकिन गड्डी पूरी होश आवाज में चलाएगा। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी की मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज और पोषण सहायता उपलब्ध है। मन में हो टीबी से जुड़ा सवाल तो करें टोल फ्री नंबर पर कॉल 1800 11 66 66। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: दे नेड़े हो के भी दूरियां रहिंदियां ने, कुछ मोहब्बतां अधूरियां रह के भी पूरियां रहिंदियां ने।
1: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
2: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। और स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 9:36 हो चुके हैं, 17 तारीख है यानी कि 17 अगस्त और मंडे का दिन। जाहिर सी बात है कि जब संडे को फंडे में तब्दील करने के बाद जब आप मंडे में गृह प्रवेश करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह रहता है कि भाई काश एक दिन और छुट्टी होती। लेकिन मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे लगता है कि सैटरडे संडे को फंडे में तब्दील करने के बाद मंडे के दिन फाइनली मुझ जैसे जो लोग हैं वो बड़ी एनर्जी के साथ, बड़े उत्साह के साथ, बड़े खुश मिजाजी के साथ ऑफिस पहुंचते हैं और पहुंचना भी चाहिए। भाई काम नहीं करेंगे तो दिक्कतें परेशानियां बहुत ज्यादा आपके सामने आ सकती है। लेकिन काम के साथ साथ आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है क्योंकि वर्तमान समय में ह्यूमिडिटी यानी कि उमस, गर्मी और बारिश, कीड़े, मतलब दिक्कतें बहुत ज्यादा है। तो कुल मिलाकर खान पान का ध्यान देना बहुत जरूरी है। और पेयजल का जब जिक्र करता हूं तो जिक्र बाद निकलकर यह भी सामने आती है कि शुद्ध पानी पीजिएगा, शुद्ध खाना खाइएगा। और अभी हाल फिलहाल में बरसात के दिन में कम से कम बाहर का जो फूड है, स्ट्रीट फूड है, तला भुना जो खाना है, आप उसे अपने आप को बचा कर रखिए। और अगर आपको इसके बावजूद भी कहीं कोई दिक्कत परेशानी महसूस होती है तो तुरंत डॉक्टर की राय लीजिएगा, खुद से डॉक्टर बनने की कोशिश मत करिएगा। वरना क्या होगा कि दिक्कतें परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती हैं। जहां 1 से 2 से 3 दिन में आप ठीक हो सकते थे एक रेस्ट के साथ, वही समय यानी कि जो मियाद है वो आपका टाइम पीरियड है वो बढ़ जाता है। हफ्ते रोज आपको घर बैठना पड़ जाता है, छुट्टी लेनी पड़ जाती है। तो ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको हमेशा अप टू डेट रखें, अपडेट रखें और यही सारी बातें हम आप तक पहुंचा रहे होते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। 9:37, 17 तारीख और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर पहुंचिए, ऑफिस पहुंचिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ।
3: अगला से की भीड़ से बाली

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: Yeah. Gagan Kokri Fateh.

इस ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल खुशाबदीद घर मतलब मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त बज चुके हैं 9:52 हो चुके हैं, 17 तारीख है यानी कि 17 अगस्त और मंडे का दिन। भोले बाबा से यही दुआ यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका दिन शुभमय गुजरे मंगलमय गुजरे कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो और जिस राह से आप गुजर रहे हैं वहां कुछ आप निशान छोड़ते जाइए। एक सोशल मीडिया के जरिए हमने एक दृश्य देखा कि एक टीचर अपने बच्चों को एक बीज मिट्टी में बांध कर या यूं कहें कि उसका एक डेला बनाकर ऑन रोड वो बच्चे फेंकते हैं, यानी कि वो बीज अगर रोप गया यानी कि बीज वो अगर मिट्टी को पकड़ गया तो कहीं ना कहीं वो एक पौधे का रूप लेगा और वही पौधा एक वृक्ष का रूप धारण करेगा। तो एक पौधा अपनी माँ के नाम जरूर लगाएगा, मौसम कुछ ऐसा ही है ना। वर्तमान समय में आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा, साथ ही साथ जो अपडेट्स हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, यानी कि हम बात करना चाहेंगे घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के बारे में, यानी कि डोमेस्टिक एलपीजी गैस सिलेंडर के बारे में। अगर आपने ई बायोमेट्रिक KYC नहीं कराई है तो आप जल्दी से जल्दी इसको करा लीजिए क्योंकि 16 अगस्त इसकी लास्ट डेट थी, लेकिन अब फिर से ग्राहकों की कहते ना वो बेहद डिमांड पर 23 अगस्त 2026 तक इस डेट को बढ़ा दिया गया ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और अगर आप चाहते हैं कि कोई नुकसान ना हो, वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो ये आपके जो घरेलू दर हैं जो उस पर सिलेंडर पाने के पात्र आप नहीं रहेंगे और आपको अस्थायी रूप से कमर्शियल रेट पर सिलेंडर खरीदना पड़ सकता है और सब्सिडी पर रोक हो सकती है और अस्थायी निलंबन हो सकता है। तो ये कुछ बातें हैं, इनको नजरअंदाज ना करेगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और जो अपडेट मैं आपको देता हूँ और जिसकी वजह से आप हमेशा अप टू डेट रहते हैं तो बस ऐसी अपडेट के लिए अप टू डेट के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरुशाता 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: हाय मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: तुम्हारे लिए बैचलर सरप्राइज पार्टी अरेंज किए हैं।
2: सरप्राइज पार्टी?
1: हाँ।
2: हमें पता ही नहीं है।
1: अरे वो सब छोड़ो यार, तुम तो तैयार हो।

ब्यूटीफुल ट्रैक ऑल योर जरूर शादा 90.8 एफएम. गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ. क्या बात है, क्या बात है. नमस्कार. 59 मिनट 17 तारीख

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो, आखिर हुआ क्या तुम्हें?
4: रोहन अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
3: अच्छा प्रिया ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
4: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे, मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ, मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ, मैं चाहती हूँ।
3: मैं समझ गया प्रिया तुम क्या चाहती हो, तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो।
4: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
3: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
4: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
3: हाँ मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
5: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
6: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
5: सो वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University.
7: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर हम एक विशेष कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत सही तो लाभ कई। इसी संदर्भ में आज हमारी सहयोगी या यूं कहें कि स्मार्ट की सहयोगी सुजाता हमारे साथ जुड़ रही हैं और विषय है संचारी रोग। इस विषय पर डॉक्टर साहब से वो क्या बात कर रही हैं, आइए सुनते हैं ये विशेष चर्चा स्मार्ट के सहयोग से सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।
8: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, मैं हूँ स्मार्ट से सुजाता और आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, संचारी रोग यानी ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे

0: में फैल सकते हैं। बदलते मौसम और बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए ये विषय हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विकास अग्रवाल, ज्वाइंट डायरेक्टर IDSP UP। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सुजाता जी।
0: सर सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि आखिर ये संचारी रोग होता क्या है और ये कैसे फैलते हैं।
1: ये तो सुजाता जी अभी आपने खुद ही थोड़ा सा इसके विषय में ज्ञान प्रदान किया लोगों को कि जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, एक माध्यम की भी जरूरत होती है। वो किसी वेक्टर के माध्यम से फैल सकते हैं, जल के माध्यम से फैल सकते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी प्रकार के माध्यम से रोग फैलते हैं उनको हम संचारी रोग कहते हैं।
0: अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा कौन कौन से संचारी रोग देखने को मिलते हैं?
1: देखिए ये डिपेंड करता है कि क्या सीजन चल रहा है। अभी जो मौसम प्रारंभ हो रहा है उसमें हमारे पास जो मुख्य रूप से अभी संचारी रोग हमको मिलेंगे, इसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, देन वाटर बॉर्न डिजीजेस कुछ हैं जैसे कि डायरिया के केसेस हमको मिल जाते हैं, तो ये सब संचारी रोग हमारे प्रदेश के लिए प्रमुख हैं। इसके अलावा कुछ नए रोग भी आ रहे हैं जो टिक्स से फैलते हैं जैसे स्क्रब टाइफस, कुछ पशु जनित रोग भी हैं जैसे लेप्टोस्पाइरोसिस। तो ये नई बीमारियां हैं जो पिछले कुछ वर्षों में हमने देखना शुरू करा है कि इनका भी प्रसार प्रदेश में तेजी से हो रहा है।
0: अच्छा, इनमें से कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो समय पर इलाज ना मिलने पर गंभीर या जानलेवा हो सकते हैं? सर
1: कोई भी रोग इनमें से अगर समय से इलाज ना किया जाए तो मलेरिया जैसा रोग जो बहुत कॉमनली मिलता है, हमको लगता है बड़ा साधारण रोग है, लेकिन वो भी जानलेवा हो सकता है अगर समय से इलाज ना हो। तो किसी भी प्रकार के रोग में, किसी भी प्रकार की बीमारी में हमको कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए और तत्काल हमें अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाके हम डॉक्टर को दिखाएं या किसी क्वालिफाइड चिकित्सक से हम इलाज करवाएं, क्योंकि कोई भी रोग जिसका समय पे इलाज ना हो वो गंभीर हो सकता है, वो जानलेवा हो सकता है।
0: संचारी रोगों को फैलने से रोकने के लिए आम लोगों को क्या सामान्य सावधानियां बरतनी चाहिए?
1: देखिए संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण आम लोगों का सहयोग ही है। आप ज्यादातर संचारी रोग मच्छर जनित हैं या जो जल भराव हो जाता है उसके कारण होते हैं, तो आप अपने घरों के पास मच्छरों का प्रजनन ना हो इस तरीके की परिस्थितियां रखें, जल भराव ना होने दें, जो मच्छर विकर्षी क्रीम होती हैं उनका प्रयोग करें, पूरी आस्तीन के कपड़े बच्चों को स्कूल जाते समय पहनाएं, ये बहुत जरूरी है। और इसके अलावा हम जो साफ सफाई है, सामान्य साफ सफाई है, उसका भी ध्यान रखें। घरों में अगर कहीं पे हमारे खाली गमले हैं, खाली बर्तन हैं, तो उसमें पानी ना भरने दें। जो फ्रिज के नीचे की ट्रे होती है, कूलर का पानी होता है, इसको निरंतर हम बदलते रहें, जल्दी जल्दी हम बदलते रहें। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं लेकिन ये संचारी रोगों के प्रसार को रोकने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
0: क्या अलग अलग संचारी रोगों के लिए सावधानियां भी अलग अलग हैं?
1: हाँ जी, अलग अलग संचारी रोगों के लिए निश्चित रूप से सावधानियां अलग अलग होती हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, अभी जो मैंने आपको सावधानियां बताई वो मच्छर जनित रोगों के विषय में थी। इसके अलावा कई रोग ऐसे होते हैं जिनका संक्रमण पशुओं के द्वारा होता है, तो जैसे रोडेंट्स, चूहे, छछुंदर वगैरह जो होते हैं उनसे भी हमको बचाव करना चाहिए, उनके माध्यम से भी स्क्रब टाइफस जैसे रोग फैल सकते हैं। तो उनको घर में पनपने ना दें, उनको आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखें, इस चीज का हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर कहीं पर पशु बाड़े हैं तो उसमें साफ सफाई रखी जाए, पशुओं का जो मल मूत्र है वो अगर संपर्क में आया है, आप पशुपालन करते हैं तो उसके बाद हाथ धोए बहुत अच्छे तरीके से, अपने शरीर की सफाई करें, उसके बाद ही अपने परिवार के सदस्यों से मिलें, भोजन बनाने से पहले, भोजन खाने से पहले हाथ जरूर धोएं, बच्चों को शुरू से ही आदत डलवाएं कि भाई खाना खाने से पहले हमको हाथ धोना है, कहीं घर से बाहर से आ रहे हैं तो हाथ धोना है। तो सामान्य स्वच्छता, पर्यावरणीय स्वच्छता, ये सब महत्वपूर्ण तरीके हैं संचारी रोगों को रोकने के।
0: अच्छा, किन किन लक्षणों को देखते ही व्यक्ति को तुरंत जांच करवानी चाहिए या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?
1: सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है संचारी रोगों का, जो बहुत सारे संचारी रोगों में मिलता है, वो है बुखार। तो अगर मरीज को बुखार आ रहा है, विशेषकर छोटे बच्चों को बुखार आ रहा है और वो सामान्य रूप से पैरासीटामोल की टैबलेट हम लेते हैं ऐसे में, लेकिन अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है रोगी और उसको पैरासीटामोल लेने के बाद भी बुखार लगातार बना हुआ है, तो तत्काल फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए।
0: सर हमारे श्रोता ये भी जानना चाहते हैं कि टीबी के मामलों में जांच कितनी जरूरी है और क्या सरकारी केंद्रों पर इसकी जांच और इलाज मुफ्त में उपलब्ध है?
1: टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका समूल नाश करने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और ये हम सबको पता है कि ये क्रोनिक बीमारी होती है। अगर सही समय पे इसकी जांच और उपचार ना कराया जाए तो ये फेफड़ों को पूरी तरीके से नष्ट करने की क्षमता रखती है, मनुष्य की कार्य क्षमता को घटाती है, उसकी उत्पादकता को घटाती है। तो इस बीमारी का तत्काल उपचार कराना, इसकी जाँच करवाना बहुत ही जरूरी है। और हर ऐसे व्यक्ति को जिसको 2 सप्ताह या उससे अधिक की खांसी आ रही हो, या कई बार होता है कि फेफड़ों की टीबी नहीं होती है तो खांसी नहीं आती है, उसमें वजन घटना, भूख न लगना, इस तरीके के लक्षण, शाम के समय हल्का बुखार, तेज बुखार नहीं होता है टीबी में, हल्का बुखार हो जाना, इस तरीके के लक्षण मिलते हैं, तो ऐसे सभी व्यक्तियों को जांच करवानी चाहिए। अगर टीबी की जांच में टीबी कन्फर्म होता है तो पूरी अवधि के लिए जो उपचार बताया गया है वो पूरी अवधि के लिए लेना चाहिए। फेफड़ों की टीबी अगर है तो परिवार के बाकी सदस्यों को कुछ प्रोफाइलेक्टिक दवाइयां दी जाती हैं बचाव के लिए, उन दवाइयों का सेवन करना चाहिए।
0: डेंगू और मलेरिया जैसे रोगों से बचाव के लिए घर और आसपास किन बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है?
1: बेसिकली साफ सफाई रखें, वो सबसे जरूरी है। कहीं पे जल भराव ना होने दें। अगर कहीं पे आपको मच्छर के लार्वा दिखाई देते हैं तो उसमें आप जो लार्विसाइडल स्प्रे होता है वो आप कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे ब्रांड्स का लार्विसाइडल आपको मार्केट में भी मिलता है, वो आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको सामान्य तरीके बताए थे कि मच्छर के काटने से कैसे बचें, ये बहुत जरूरी है। और ये ना केवल आप खुद अपनाएं बल्कि अपने बच्चों को भी बताएं। घर के दरवाजों पे, खिड़कियों पे जाली लगाना, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनना, मच्छर विकर्षी क्रीम का प्रयोग करना, ये सारे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनसे आप डेंगू और मलेरिया दोनों से ही बच सकते हैं।
0: अच्छा, दस्त और डायरिया उल्टी जैसे संक्रमण से बचने के लिए ग्रामीण और शहरी लोगों को क्या करना चाहिए?
1: दोनों के लिए उपाय एक समान ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि शहरी क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता पाइप्ड वाटर के रूप में होती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार आप हैंडपंप का पानी प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखें कि जो जल का स्रोत है उसके आसपास, अगर आप हैंडपंप का पानी प्रयोग कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उसका जो बेस होता है उसके आसपास जल भराव की स्थिति ना हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोएं। अगर किसी भी व्यक्ति को दस्त आ रहा है तो उसको ORS अवश्य दें, और उसके बारे में तत्काल अपने आशा को, ANM को सूचना दें। अगर अनेक बार दस्त आ रहा है तो उसको अस्पताल में भर्ती करा के उपचार करने की भी जरूरत हो सकती है। और परिवार के बाकी सदस्यों में भी देखें कि किसी प्रकार के लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। विशेषकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें दस्त के लक्षण कई बार समझ में नहीं आते हैं, वो बच्चा अचानक रोना बंद कर देता है और आप उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें, इन लक्षणों का ध्यान रखें, और साफ सफाई, व्यक्तिगत स्वच्छता जो है वो दस्त रोग से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। शुद्ध पेयजल का प्रयोग करना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके पास शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है तो उसको क्लोरीनेशन के माध्यम से 20 लीटर पानी में एक क्लोरीन की टैबलेट आप डाल के छोड़ सकते हैं, या उसको आप उबाल के भी शुद्ध कर सकते हैं। तो शुद्ध पेयजल का प्रयोग करें, ये महत्वपूर्ण होता है।
0: JEAES जैसे गंभीर रोगों में बच्चों की सुरक्षा के लिए टीकाकरण कितना जरूरी है?
1: देखिए, केवल JEAES नहीं बल्कि खसरा है और गलघोटू है, डिफ्थीरिया मीजल्स जिसको कहते हैं, इसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस होती है, मम्स होते हैं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लिए नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत टीका बच्चों को लगाया जाता है। ये सारी बीमारियां और सारे टीके एक विशेषज्ञों के समूह के द्वारा बहुत ही गहन विचार विमर्श के उपरांत निर्धारित किए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में और देश में कौन से टीके बचपन में लगने जरूरी हैं। तो जो भी टीके नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत प्राविधानित हैं, वो सारे टीके जो आयु के अनुसार उनकी लगाए जाने की फ्रीक्वेंसी है उसको पालन करते हुए वो सारे टीके अनिवार्य रूप से बच्चों को लगाने चाहिए।
0: क्या केवल साफ सफाई रखने से इन सभी रोगों से बचाव संभव है, या इसके साथ और भी उपाय जरूरी?
1: साफ सफाई एक तरीका है, लेकिन इसके साथ कैसे प्रचार होता है रोगों का, इसके विषय में जानकारी, रोग अगर फैल रहे हैं तो तत्काल अपने आसपास जो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनको जानकारी देना। कई बार आवश्यक होता है कि अगर मच्छर जनित रोग है तो मच्छरों को समूल खत्म करने के लिए आपको लार्विसाइडल स्प्रे या फॉगिंग करनी पड़ेगी। अगर जल जनित रोग है तो हो सकता है कि जल का स्रोत दूषित हो, उसको आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा, पेयजल की जांच करवानी पड़ेगी। तो बहुत सारे विभिन्न तरीके हमको करने पड़ते हैं संचारी रोगों से बचने के लिए।
0: अगर किसी गांव या मोहल्ले में कई लोगों को एक साथ बुखार, खांसी या दस्त जैसी समस्या होने लगे तो सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए?
1: सबसे पहले तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपके घर के आसपास अनिवार्य रूप से कोई ना कोई आशा कार्यकर्ता होंगी, ANM होंगी या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे। तो सबसे पहले तो आप उनको सूचित करें। कुछ जांचें वो अपने स्तर पे कर सकते हैं और कुछ जांचों के लिए अगर उन्हें आवश्यक लगेगा तो आपको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर भेजेंगे, कुछ दवाइयां भी वो देंगे। तो जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उनको सूचित करें, उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करें, जो जांचें और उपचार आपको बताया जाए उसको पूरी तरीके से करवाएं, चाहे आप शहरी क्षेत्र में हो चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में हो।
0: संचारी रोगों को लेकर जो डर अफवाह होता है उसे कम करने में सही जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है?
1: सही जानकारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और अब सोशल मीडिया का जमाना है तो बहुत सारे माध्यम इस तरीके के हैं जिनके माध्यम से हम तत्काल जो वस्तु स्थिति है, रोग से बचाव के तरीके हैं, रोग कैसे फैल रहा है और रोग की वास्तविक स्थिति क्या है, इसके विषय में हम तत्काल सही जानकारी दे सकते हैं। तो सही जानकारी के बिना ना केवल आप भ्रम की स्थिति में रहेंगे, अपितु अगर किसी एक व्यक्ति या एक क्षेत्र में रोग फैला हुआ है तो आगे उसके प्रसार को कैसे रोका जाए ये भी आपको पता नहीं चल पाएगा। तो सही जानकारी अत्यंत आवश्यक है, इसके लिए सभी प्रकार के उपायों का प्रयोग करना चाहिए। स्कूल में टीचर्स को भी हमने जो कॉमन बीमारियां हैं उनके लक्षणों के विषय में, उनसे बचाव के उपायों के विषय में जानकारी दी है, तो वो आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, ANM ये सब फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारा सहयोग करते हैं समाज को सही जानकारी प्रदान करने में।
0: सर आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए आपकी तरफ से जरूरी क्या संदेश है?
1: स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, और स्वच्छ रहना और पर्यावरणीय स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, ये स्वास्थ्य की कुंजी है, और जितना आप स्वस्थ रहेंगे उतना ही आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उतना ही आपका समाज के लिए अपने परिवार के लिए योगदान रहेगा। अगर आप बच्चे हैं, छात्र हैं, तो स्वस्थ रहना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो आपके एकेडमिक रिजल्ट्स को प्रभावित करता है, आपकी जो तैयारी है, एग्जाम्स के लिए तैयारी है, आपकी पढ़ाई करने की क्षमता, उस सबको भी प्रभावित करता है। तो स्वच्छता और स्वस्थ रहना, स्वस्थ जीवन, ये दोनों ही बहुत आवश्यक है और दोनों एक दूसरे के पूरक है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। तो श्रोताओं आपने सुना, सही जानकारी, समय पर जांच करो और थोड़ी सी सावधानी से हम संचारी रोगों से खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे डॉक्टर विकास हेनु सर ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: अभी आप सुन रहे थे सुनो शारदा 90.8 FM पर एक खास जानकारी डॉक्टर विकास के जरिए, और इस प्रोग्राम में शिरकत कर रही थी हमारी सहयोगी सुजाता। विषय था संचारी रोग। संचारी रोग यानी कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या परजीवी, अर्थात परजीवी रोगाणु के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा, पानी, भोजन या कीड़ों के माध्यम से फैलता है। तो प्लीज सावधानी बरतें, लापरवाही न बरतें, डॉक्टर की सलाह के साथ आगे बढ़ेंगे तो रोग मुक्त आप रहेंगे। तभी तो कहते हैं सेहत सही तो लाभ गई। ऐसी विशेष जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
3: हाय, मैं अरुण, मुझे आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @ 90.8 FM।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरत

0: करने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 एफएम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाएं। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं हल्दी, मेथी और सौंठ का एक साथ अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर की 5 समस्याओं से तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं इसके कुछ लाभ के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण के क्या क्या फायदे हैं। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे देश में मसालों का भंडार है। घर की रसोई हो या फिर किसी ढाबे और रेस्टोरेंट की रसोई, हर जगह आपको मसालों की खुशबू आसानी से मिल जाएगी। मसालों का कई मिश्रण ऐसा होता है जो आपके शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इन मिश्रण में मेथी, हल्दी और अदरक यानी सौंठ का मिश्रण है। मेथी, अदरक और हल्दी के मिश्रण से कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अब जानते हैं कि अदरक, मेथी और हल्दी से सेहत को होने वाले फायदे क्या क्या हैं। बात सामने आती है कि उल्टी और दस्त में किस तरीके से आराम करता है। अगर आपको उल्टी या फिर जी मिचलाने जैसा अनुभव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण फायदेमंद हो सकता है। साथ ही इससे दस्त की परेशानी को कम करने में

0: और कई विटामिन्स का संयोजन होता है जो आपकी हड्डियों की मजबूती को बढ़ावा दे सकता है। नियमित रूप से इस मिश्रण के सेवन से हड्डियों को विकास और मजबूती में मदद मिल सकती है। बात जोड़ों के दर्द में किस तरीके से आराम मिलता है, तो हल्दी, मेथी और अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो शरीर की सूजन को कम कर सकता है, साथ ही जोड़ों में होने वाले दर्द से आराम दिला सकता है। इन मसालों की तासीर भी गर्म होती है जिससे मांसपेशियों को रिलैक्स महसूस होता है। अगर आप अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन जरूर करें। बात इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रूप से मौजूद होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इससे संक्रमण और वायरल बीमारियों से दूर करने में मदद मिल सकती है। बात कफ की परेशानी को कैसे कम करें। तो जिन लोगों को कफ की परेशानी होती है, उन लोगों के लिए अदरक, हल्दी और मेथी का मिश्रण फायदेमंद होता है। दरअसल इन मसालों का मिश्रण फायदेमंद होता है जिससे वात कफ की परेशानी कम हो सकती है, साथ ही अन्य बीमारियां भी दूर होती हैं। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरो साधन 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।
1: हाय, दिस इज शालमली फोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 एफएम सुनो शारदा।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: मैंने वादा किया था बहू से, मैंने वादा किया था, मुझे पूरा करना ही होगा।
2: लो माँ भी आ गई। माँ देखो, तुम्हारा पोता बिल्कुल मुझ पे गया है ना।
1: ये सब बाद में, पहले बच्चा इधर ला। ये ले बहू, लगा अपने सीने से और पिला दूध। देख किया ना मैंने वादा पूरा, पहले घंटे की सुरक्षा का।
3: हाँ माँ जी।
4: जन्म के पहले घंटे में बच्चे को मिले माँ के दूध और तन की गर्मी की सुरक्षा। देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग डेढ़ गुना ज्यादा खतरा। याद रहे वादा पहले घंटे की सुरक्षा का।
5: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

नवजात शिशु के संपूर्ण विकास के लिए दूध पिलाने वाली माँ को खाना चाहिए ये आहार। जो अपने जन्मजात बच्चों का अच्छा विकास देखना चाहती हैं, उन्हें स्वस्थ और पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए। आपके द्वारा किए गए स्वस्थ और पौष्टिक आहार का सेवन आपके बच्चे को उचित मात्रा में सभी पोषण तत्व प्रदान करता है और किसी भी प्रकार के पोषण तत्व की कमी से पीड़ित नहीं होने देता। स्वस्थ और पौष्टिक आहार केवल गर्भ अवस्था के दौरान ही आवश्यक नहीं होता है, बल्कि वो आपके स्तनपान की गुणवत्ता के लिए भी जरूरी होता है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अपने सामान्य आहार में उच्च प्रोटीन, कैल्शियम, पोषण तत्व और विटामिन युक्त आहार का सेवन करना चाहिए। साथ ही उन्हें तरल पदार्थ का भी सेवन करना चाहिए। तो चलिए कुछ ऐसे ही खाद्य पदार्थ के बारे में जानकारी लेते हैं, जिनके सेवन से आपके बच्चे के विकास के लिए संपूर्ण पोषण तत्व प्रदान हो सकते हैं। दूध पिलाने वाली महिला को पीना चाहिए दूध। आपके आहार में कैल्शियम को बनाए रखने और उसे बढ़ाने के लिए दूध आवश्यक है। यह आपके बच्चे की हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण है और उनकी हड्डियों में उचित कैल्शियम बनाए रखता है। यह आपके बच्चे के शरीर में एनर्जी बनाए रखने में मदद करता है। स्तनपान कराने वाली माँ को पीना चाहिए अधिक पानी। स्तनपान कराने वाली माताओं को कैफीन युक्त और अल्कोहल पेय पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रसायन स्तनपान के माध्यम से आपके शिशु के अंदर भी जा सकते हैं। कैफीन युक्त पेय के 3 कप से अधिक का सेवन करने से माताओं को नींद न आने की समस्या हो सकती है और आपके शिशु में चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। दूध पिलाने वाली माँ का भोजन। बच्चे के जन्म के बाद माँ आहार में खाएं हरी पत्तेदार सब्जियाँ। स्तनपान कराने वाली माताओं को हरे पत्ते वाली सब्जियों का उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए। हरे पत्ते वाली सब्जियाँ विटामिन और पोषण तत्व जैसे विटामिन ए और कैल्शियम, विटामिन सी, आयरन आदि में समृद्ध होती हैं, जो माँ और बच्चे दोनों के अधिकांश पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ को खाना चाहिए संतरा। संतरे में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके सेवन से माताएं संक्रमण से दूर रहती हैं और उनके बच्चों को प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ाने में भी मदद मिलती है। बच्चे को दूध पिलाने वाली महिला को खाना चाहिए साबुत अनाज। साबुत अनाज फोलिक एसिड में समृद्ध होता है। साबुत अनाज सही तरह से कोशिका में वृद्धि के साथ साथ आपके बच्चों के मस्तिष्क के विकास में भी सहायता करता है। फोलिक एसिड पूरक के रूप में चिकित्सक द्वारा एक बार देने की सलाह दी जाती है। साबुत अनाज में मौजूद फोलिक एसिड इन पौष्टिक जरूरतों को पूरा करने में मददगार है। स्तनपान कराने वाली महिलाएं खाएं मछली। सैल्मन मछली DHA से समृद्ध होती हैं और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी उच्च मात्रा में पाई जाती है। यह आपके बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है, हालांकि इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।
2: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
3: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
2: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
4: आई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
5: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
6: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
7: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
5: तो सुनते रहिए सुनो शार्दा।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका मन पसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, कार्यक्रम खेत खलियान का उद्देश्य यही है कि आप खेती की नई नई तकनीकों के बारे में जानें, फिर उनका इस्तेमाल अपनी खेती में करें ताकि आपको अधिक लाभ मिले और खेती में आपकी लागत है वो कम हो। किसान मित्रों, भारत के गांव और शहरों में भी आजकल सौर ऊर्जा का उपयोग अब संभव हो गया है। एक समय था जब भारत के अनेक गांवों में बिजली नहीं थी, लेकिन तकनीकी विकास और सौर ऊर्जा की मदद से आज भारत के अनेक गांवों में बिजली है। हालांकि आज भी भारत में अनेक गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं है, लेकिन सौर ऊर्जा की मदद से गांव और शहरों में बिजली का उत्पादन काफी तेजी से बढ़ा है और लोग सौर ऊर्जा की मदद से अपने घर को रोशन करने में सफल हुए हैं। किसान मित्रों, सोलर पैनल लगवाने पर सरकार भी आपकी काफी मदद कर रही है, जिसके लिए कुसुम सोलर योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य भारत के किसानों को सोलर पंप लगाकर उनके कृषि व्यवसाय को बेहतर बनाना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को सस्ते दामों पर सोलर पंप लगाने की सुविधा दी जाती है, जो उनकी कृषि खेती के लिए जल सप्लाई की समस्याओं को हल करता है। इस योजना के तहत किसान भाई कुल लागत का मात्र 10% लगाकर सोलर पैनल लगवा सकते हैं। किसान मित्रों, कुसुम योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य हमारे किसान भाइयों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप प्रदान करना है। इस योजना के तहत भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर डीजल सिंचाई पंपों को सौर ऊर्जा पंपों में बदल रही है। तो जो किसान भाई सिंचाई पंपों को डीजल या पेट्रोल की मदद से चलाते हैं, अब उन पंपों को इस कुसुम योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा से चलाया जाएगा। तो किसान मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कुसुम योजना का लाभ लेना, तो आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में इस बारे में बात कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये तो बात रही कुसुम योजना की, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं ज्ञानेंद्र सरधाना और टीना पटौदी, और किस्सा रहेगा जानी चोर का।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ज्ञानेंद्र सरधाना और टीना पटौदी से ये रागनी, किस्सा था जानी चोर का। किसान मित्रों, भारत सरकार देश के किसानों के साथ ही अब युवाओं को रोजगार मुहैया कराने पर अपना ध्यान केंद्रित

उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही हैं। इसी कड़ी में सरकार की ओर से पशु मित्र योजना शुरू की गई है। इसके तहत खासकर ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। चयनित युवाओं को पशुओं की चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान, पशुओं के रोग कारण, उनके रोकथाम की जानकारी, टीकाकरण, ब्रीडिंग और आहार का प्रयोगात्मक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद अभ्यर्थी पशु मित्र के रूप में पशु चिकित्सा विभाग के साथ समन्वय

कर सकते हैं। पशु मित्र योजना के माध्यम से पशुपालक किसानों को टीकाकरण, पशु बीमा, कृत्रिम गर्भाधान और किसान क्रेडिट कार्ड, इन सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। इसके लिए पशु मित्र नियुक्त किए जा रहे हैं जो किसानों को इन योजनाओं का लाभ दिलाने में उनकी सहायता करेंगे। इससे हमारे पशुपालक किसानों को समय पर योजना

तो जो भी हमारे ग्रामीण युवा पशु मित्र बनना चाहते हैं वो अपने ज़िले में ज़िला पशु चिकित्सालय में जाकर के संपर्क कर सकते हैं और इस योजना के बारे में विस्तार से जान करके आवेदन कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना पशु मित्र योजना के बारे में, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक और रागनी। कलाकार हैं रविंद्र खालौर और सुनील चौहान। किस्सा रहेगा महाभारत का।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रविंद्र खालोर और सुनील चौहान से ये रागनी। किसान मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, खेती में पानी की खपत को कम करना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। जल संकट बढ़ रहा है और किसानों के लिए कम पानी में अधिक खेती करना एक चुनौती बन चुका है। सही तकनीक और उपकरणों के इस्तेमाल से, जैसे एग्रीकल्चर स्प्रे मशीन, इसके जरिए हमारे किसान भाई अपनी खेती में पानी की बचत कर सकते हैं और अधिक उत्पादन भी ले सकते हैं। आजकल आधुनिक तकनीकों के उपयोग से हमारे किसान भाई कम पानी में ज्यादा फसल उगा सकते हैं। इसीलिए पानी बचाने के लिए भी हमारे किसान भाइयों को आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन यानी कि बूंद बूंद सिंचाई और स्प्रिंकलर सिस्टम से पानी की बर्बादी रोकी जा सकती है। इसके अलावा बारिश के पानी का संचय करके सिंचाई के लिए पानी का उपयोग किया जा सकता है। मल्चिंग तकनीक अपनाने से मिट्टी में नमी बनी रहती है, जिससे सिंचाई की जरूरत कम हो जाती है। तो आजकल जो आधुनिक तकनीकें आ गई हैं सिंचाई की, उनका इस्तेमाल करके हमारे किसान भाई समय की बचत कर सकते हैं और साथ ही साथ पानी की बचत कर सकते हैं और खेती में लागत कम कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना सिंचाई की आधुनिक तकनीकों के बारे में, और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं तरुण।

तरुण बालियान द्वारा गाए गए इस उपदेश के साथ ही आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
3: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
2: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। HIV और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक HIV रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर HIV संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग HIV को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर HIV रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूं कि हर HIV मरीज तुरंत टीबी की जांच कराएं और सभी टीबी मरीज भी HIV की जांच कराएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हाय, नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जन्मदिन मुबारक हो तारा।

0: कचरा तो गाँव वाली बाई या मम्मी उठाती है, ये अंकल कचरा क्यों उठा रहे?
1: टीचर ने बताया था ना,
2: सभी काम सब लोग कर सकते हैं, पुरुष या महिला।
1: सफाई करना तो हम सभी का काम है। अप्पा एक मिनट, मैं भी कचरा उठाने में आपकी मदद करूँगी।
3: ठीक है चलो, तो हो जाए कचरा पार्टी।
4: कचरा पार्टी?
5: बर्थडे पार्टी और घर से जो भी कचरा निकला है उसका सही उपयोग और प्रबंधन करना जरूरी है, तो हो जाए कचरा पार्टी।
2: कचरे का सही उपयोग और प्रबंधन मतलब
5: घर पे, स्कूल में या बाहर सड़क पर कचरा यूं ही नहीं फेंकना। ये कचरा हमारे वातावरण, जमीन, हवा, पानी को प्रदूषित करता है।
0: और कचरे के आसपास चूहे, छुछुंदर, मक्खी मच्छर का घर बन जाता है और कीड़े भी लग जाते हैं
1: जो हमें बीमार कर सकते हैं, इसलिए कचरे को हमेशा कूड़ेदान में डालो।
3: रुको तारा, पहले ये देख लो ये कचरा किस तरह का है।
1: कचरा भी अलग अलग तरह का होता है अब्बा।
3: हाँ तारा, ये देखो कि ये सूखा कचरा है या गीला कचरा।
5: जो आसानी से सड़ जाए वो है गीला कचरा, और जो ना सड़े या कई सालों बाद सड़े वो है सूखा कचरा।
1: ये सड़ सकता है, इसका मतलब ये गीला कचरा है।
3: बहुत अच्छे तरह, हमेशा सोचो कि कचरा दोबारा किस काम आ सकता है।
6: इस गीले कचरे को गमले में डाल के मिट्टी से ढक दे तो कुछ समय के बाद ये गीला कचरा जैविक खाद बन जाता है।
0: तो अंकल क्या हम बचा हुआ हलवा भी गमले में डाल सकते हैं? ये भी तो गीला कचरा है।
3: नहीं चलो, पका हुआ खाना गमले में नहीं डालना, उसे तुम जानवरों को खिला सकते हो।
1: वाह, कचरा भी आएगा दोबारा काम, तो ये गया गीले कचरे में। और मेरे पास है सूखा कचरा।
3: वाह वाह वाह वाह, तुम सब समझ गए। तो इस तरह घर पर ही सूखे और गीले कचरे को अलग कर लिया। और अब ऐसे कचरे की बात करते हैं जो हजारों साल तक सड़ते नहीं, और कुछ कचरे तो खतरनाक भी होते हैं।
1: हजारों साल तक सड़ते नहीं
4: और खतरनाक भी होते हैं,
3: जैसे प्लास्टिक जो हजारों सालों तक ऐसे ही रहेगा, या फिर टूटा शीशा, ब्लेड वगैरह। अगर इन्हें इस कचरे में मिला दिया और कहीं जानवरों ने खा लिया तो
1: या फिर कहीं शीशे के टुकड़े काम वाली दीदी या कूड़ा इकट्ठा करने वाले भैया को चुभे तो।
6: इसलिए कोशिश करो कि ऐसी खतरनाक चीजों को अलग से अखबार में लपेट कर बाजार जाते हुए कपड़े का थैला साथ ले लो, ताकि प्लास्टिक का इस्तेमाल न करना पड़े।
3: और अगर करना ही पड़ जाए तो उसे बार बार किसी तरह से इस्तेमाल करो, ना कि कूड़े में फेंक दो।
0: बार बार इस्तेमाल,
1: जैसे इस गिफ्ट रैपिंग पेपर को हम अपनी नोटबुक या किताबों में कवर की तरह चढ़ा सकते हैं।
3: अरे ये क्या खुसर खुसर चल रही है।
1: अब आप देखिए अब्बा, हमारी कचरा कला।
0: हमने कचरे को दोबारा इस्तेमाल करके अपने वातावरण को बचाया।
7: अरे वाह, इसे तो मैं अपने टेबल पर सजाऊंगा।
2: तो तुम सब कब कर रहे हो कचरा पार्टी?

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: लक्षण इसी से तो किसी की पहचान बनती है, और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। और यही लक्षण पहचान कर हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी है। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: यह संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर कांटा किसी की उंगली

0: अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध।
1: इस पृष्ठ के दाईं ओर एक पौधा है जिसमें फूल लगे हैं, जिन पर तितलियां मंडरा रही हैं। इस पृष्ठ पर नीचे की तरफ एक कैक्टस का पौधा है जिस पर फूल खिले हैं और भंवरे मंडरा रहे हैं। बाईं ओर एक महिला बाजार से सब्जियां ला रही है, साथ ही उसके साथ दो बच्चे हैं जिसमें लड़का बॉल से खेल रहा है और लड़की के हाथ में पुस्तक है। पृष्ठ संख्या 30। कवि से परिचय। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो। बचपन में ये प्यारी कविता आपने भी पढ़ी होगी। इस कविता को रचने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ही फूल और कांटा के कवि हैं। बच्चों के लिए उन्होंने अनेक रोचक कविताएं लिखी हैं। उनका जन्म आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। हरिऔध जी की चर्चित काव्य कृति प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। बच्चों के लिए उनके अनेक कविता संकलन प्रकाशित हैं, जिनमें चंद्र खिलौना और खेल तमाशा उल्लेखनीय है। रिपीट, यहाँ पृष्ठ पर उनका चित्र दिया गया है और साथ ही उनका जन्म वर्ष 1865 और मृत्यु वर्ष 1947 है।
0: आइए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियाँ इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से कविता के आधार पर यहाँ दिए गए प्रश्नों

और कांटा कठोरता का। फूल और कांटे के बारे में लोगों के विचार समान होते हैं। फूल और कांटे एक ही पौधे पर उगते हैं, लेकिन उनके स्वभाव भिन्न होते हैं। फूल और कांटे को समान देखभाल मिलती है, फिर भी उनके रंग ढंग अलग होते हैं। यहाँ पृष्ठ पर एक कैक्टस का पौधा है

0: जाना जाता है। कुल का नाम व्यक्ति में बड़प्पन की पहचान का मुख्य आधार है।
1: यहाँ एक चित्र है जिसमें एक टब में भरे हुए पानी से कुछ पक्षी खेल रहे हैं और उन्हें दूर खड़ा हुआ एक बालक देखकर

पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां यहां दी गई।

0: कुछ चित्र और शब्द दिए गए हैं, जैसे फूल के चित्र के नीचे फूल शब्द लिखा है, इसी प्रकार कैक्टस के चित्र के नीचे कांटा शब्द लिखा है।
1: सोच विचार के लिए कविता को एक बार पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। क: कविता में ऐसी कौन कौन सी समानताओं का उल्लेख किया गया है जो सभी पौधों पर समान रूप से

0: अण है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरशीश पर। लोग कैसे स्वभाव के व्यक्तियों की प्रशंसा करते हैं और कैसे स्वभाव वाले व्यक्तियों से दूर रहना पसंद करते हैं।
1: अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। क, कल्पना कीजिए कि चांदनी, हवा और मेघ केवल एक पौधे पर बरसते हैं, बाकी पौधे इन सब के बिना कैसे दिखेंगे और उनके जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा। इस पृष्ठ के निचले भाग में एक चित्र है जिसमें एक मेघ केवल एक ही पौधे पर अपना जल बरसा रहा है, बाकी अन्य पौधे सूख रहे हैं।
0: पृष्ठ संख्या 33। ख, यदि सभी पौधे एक जैसे होते तो दुनिया कैसी लगती।
1: ग, यदि कांटे ना होते और हर पौधा केवल फूलों से भरा होता तो क्या होता।
0: घ, कल्पना कीजिए कि एक तितली कांटे से मित्रता करना चाहती है, उनके बीच कैसा संवाद होगा।
1: अण, कल्पना कीजिए कि आपको किसी कांटे, फूल या दोनों के गुणों के साथ जीवन जीने का अवसर

0: यहाँ दिए गए रिक्त स्थानों में बड़प्पन से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा कीजिए। यहाँ बड़प्पन शब्द के साथ 6 रिक्त स्थान दिए गए हैं। आपकी सुविधा के लिए बड़प्पन शब्द को संतोष शब्द से मिलान किया गया है। अब आप अपनी कल्पना से एवं चर्चा से अन्य 6 शब्दों को रिक्त स्थानों में भरिए।
1: बड़प्पन, बड़प्पन शब्द बड़ा और पन से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है बड़ाई।

0: क्रूरता, आदर, अपमान, विश्वास, उदारता, सम्मान, अविश्वास, घमंड, विनम्रता, निष्ठा, झूठ, ईर्ष्या, त्याग, परोपकार, अधीरता।
1: इस पृष्ठ पर एक तालिका है। उस तालिका में कुछ शब्द दिए गए हैं। बड़प्पन से संबंधित शब्दों पर गोला बनाइए और जो बड़प्पन का भाव व्यक्त नहीं करते हैं उन्हें रेखांकित करें।

दा देता कली का जी खिला। इस पंक्ति में रेखांकित शब्द पर ध्यान दीजिए। क्या आपने इस शब्द को पहले कहीं पढ़ा है? यह शब्द है और। कविता में

0: साझा कीजिए।
1: ख, यहाँ इस कविता की कुछ विशेषताएं और ये पंक्तियां दी गई हैं, जिनमें ये विशेषताएं झलकती हैं। विशेषताओं का सही पंक्तियों से मिलान कीजिए। आप इस कविता की पंक्तियों में एक से अधिक

0: मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द भी दिए गए हैं। इनमें से प्रत्येक शब्द से वह पंक्ति पूरी करके देखिए। जो शब्द उस पंक्ति में जच रहे हैं उन पर घेरा बनाइए।
1: इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में एक चित्र है जिसमें कुछ फूलों पर एक तितली और एक भौंरा मंडरा रहे हैं।
0: पृष्ठ संख्या 35। एक है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रिक्त स्थान में उन पर चमकता। रिक्त स्थान भी। इस पंक्ति के लिए संकेत शब्द इस प्रकार है: रात, रात्रि, रजनी, निशा, शशि, चंद्रमा, चांद, राकेश, इंदु। एक ही सी चांदनी है डालता।

यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। ख, अपने समूह में चर्चा करके पता लगाइए कि कौन सा शब्द रिक्त स्थानों में स

जिसमें कुछ भौरे उड़ रहे हैं। श्याम तन का अर्थ है काला शरीर। यहाँ श्याम शब्द भंवरे के शरीर की विशेषता बता रहा है, अर्थात श्याम विशेषण है। तन एक संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता

करके लिखिए। यहाँ एक तालिका है जिसके तीन स्तंभ हैं। पहले स्तंभ में पंक्ति, दूसरे स्तंभ में विशेषण और तीसरे स्तंभ में विशेष्य।

0: सूर्य मुस्कुराता हुआ है, मध्य भाग में चंद्रमा सो रहा है और उस पर एक कैक्टस का पौधा बैठा है, वहीं दाईं ओर एक परी उड़ रही है और नीचे की ओर एक गुलाब के फूल का चित्र है।
1: पाठ से आगे आपकी

कविता में बताया गया है कि फूल अपनी सुगंध और व्यवहार से चारों ओर प्रसन्नता और आनंद फैला देता है। आप अपने मित्रों या परिवार के जीवन में प्रसन्नता और आनंद लाने के लिए

0: छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर बसन। आप अपने आसपास की किसी समस्या का वर्णन कीजिए जिसे आप कांटे के समान महसूस करते हैं, उस समस्या का समाधान भी सुझाइए।
1: पृष्ठ संख्या 37, सृजन क। इस कविता के बारे में एक चित्र बनाइए। आप चित्र में जहां चाहें अपने मनोनीत रंग भर सकते हैं। आप बिना रंगों या केवल उपलब्ध रंगों की सहायता से भी चित्र बना सकते हैं। चित्र बिल्कुल मौलिक लगे इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी कल्पना को जैसे मन करे वैसे साकार कर सकते हैं। यहाँ इस पृष्ठ पर एक रिक्त स्थान दिया गया है जहाँ पर आप अपने कल्पना अनुसार चित्र बना सकते हैं। यहाँ इस पृष्ठ पर मध्य भाग में एक रिक्त स्थान दिया गया है जहाँ आप अपनी कल्पना अनुसार चित्र बना सकते हैं।
0: ख, मान लीजिए कि फूल और कांटे के बीच बातचीत हो रही है। उनकी बातचीत या संवाद अपनी कल्पना से लिखिए। संवाद का विषय इस प्रकार हो सकता है, उनके गुणों और विशेषताओं पर चर्चा, यह समझाना कि उनका जीवन में क्या योगदान है। उदाहरण, फूल, मैं दूसरों के जीवन में सुगंध और सुख फैलाने आया हूँ। कांटा, और मैं संघर्ष की याद दिलाने और सुरक्षा देने के लिए हूँ।
1: इस पृष्ठ के निचले भाग में एक चित्र है जिसमें एक फूल और एक कांटा है। फूल के नीचे शब्द हैं खुशबू और खुशी। इसी प्रकार कांटे के नीचे शब्द हैं सुरक्षा और संघर्ष।
0: पृष्ठ संख्या 38, वाद विवाद। विभिन्न समूह बनाकर कक्षा में एक वाद विवाद गतिविधि का आयोजन कीजिए। इसके लिए विषय हैं जीवन में फूल और कांटे, दोनों की आवश्यकता होती है। कक्षा में वाद विवाद गतिविधि का आयोजन करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। एक, आपकी कक्षा में पहले से 7-8 समूह बने होंगे। आधे समूह फूल के पक्ष में तर्क देंगे, आधे समूह कांटे के पक्ष में तर्क देंगे। दो, एक समूह निर्णायक मंडल की भूमिका निभाएगा। निर्णायक मंडल का काम होगा तर्कों को ध्यान से सुनना, प्रस्तुति शैली और तर्कों की गहराई के आधार पर अंकों का निर्धारण करना। तीन, प्रत्येक समूह को तैयारी के लिए 15 मिनट का

पक्ष में बोलने के लिए 3-4 मिनट का समय मिलेगा। दूसरा समूह पहले समूह के तर्कों पर 1-2 मिनट में उत्तर देगा या उनसे प्रश्न पूछेगा। 5. सभी प्रतिभागियों को एक दूसरे की बात ध्यान से सुननी होगी। बीच में टोकने की अनुमति किसी को नहीं होगी। 6.

0: 8 निर्णायक मंडल अंकों के आधार पर विजेता समूह का निर्णय करेगा। 9 समूहों के प्रयासों के लिए तालियां बजाएं और उनकी प्रशंसा करें। संभव हो तो विजेता समूह को कोई पुरस्कार या प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। 10 विद्यार्थी वाद विवाद गतिविधि के अनुभवों पर एक अनुच्छेद भी लिख सकते हैं।
1: इस पृष्ठ के निचले भाग में दो चित्र हैं। पहले चित्र में कुछ फूल हैं जिस पर एक तितली बैठी हुई है। वहीं दूसरे चित्र में दो गमले हैं जिनमें कैक्टस के पौधे लगे हैं, कुछ फूल खिले हुए हैं। पृष्ठ संख्या 39 आज की पहेली। यहाँ कुछ ऐसे पेड़ पौधों के चित्र दिए गए हैं जिनमें फूल और कांटे साथ साथ पाए जाते हैं। चित्रों को सही नामों के साथ रेखा खींचकर जोड़िए। यहाँ इस पृष्ठ पर एक तालिका है जिसमें दो स्तंभ हैं। पहले स्तंभ का शीर्षक है वर्णन, दूसरे स्तंभ का शीर्षक है चित्र। 1 बबूल। यहाँ बबूल से संबंधित कुछ जानकारियां दी गई हैं। फूल पीले या सफेद छोटे गुच्छेदार, कांटे लंबे और नुकीले। विशेषता, इसका उपयोग ईंधन, चारा और औषधियों में किया जाता है। 2 गुलाब। यहाँ गुलाब से संबंधित जानकारियां इस प्रकार हैं। फूल विभिन्न रंगों में, विशेष रूप से लाल, सफेद और गुलाबी। कांटे तने पर छोटे और तीखे। विशेषता, सजावटी पौधा और इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध। 3 नागफनी। नागफनी से संबंधित जानकारियां इस प्रकार हैं। फूल रंग बिरंगे, पीले, नारंगी या गुलाबी। कांटे पूरी सतह पर छोटे या लंबे। विशेषता, सूखे क्षेत्रों में पाया जाता है और सजावटी पौधे के रूप में भी उगाया जाता है। 4 बेर। बेर से संबंधित विशेषताएं इस प्रकार हैं। फूल छोटे और हल्के पीले। कांटे शाखाओं पर छोटे छोटे। विशेषता, इसके फल खाद्य और औषधीय होते हैं। 5 करौंदा। करौंदा से संबंधित जानकारियां हैं। फूल छोटे सफेद और सुगंधित। कांटे शाखाओं पर छोटे छोटे और तीखे। विशेषता, फूल सजावटी और मधुर सुगंध वाले होते हैं। इसके फल से अचार, जैम और जेली बनाई जाती हैं। यह शुष्क और पहाड़ी क्षेत्रों में उगता है। 6 नींबू। नींबू से संबंधित जानकारियां हैं। फूल छोटे सफेद और हल्की गुलाबी छाया लिए हुए, सुगंधित और गुच्छेदार। कांटे शाखाओं पर छोटे और तीखे कांटे। विशेषता, फल खट्टे और विटामिन सी से भरपूर होते हैं। इनका उपयोग पेय पदार्थ, अचार

0: ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, वाचन स्वर सीमा सती और चांद मोहम्मद, निर्माण सहयोग कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचाकर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: क्या हुआ बहू, इतनी खांसी?
2: माजी, मुझे टीबी है।
1: टीबी? और छुपा कर रखा?
2: माजी, मुझे डर था कि कहीं आप मुझे वापस मायके न भेज दें।
1: जाना तो तुझे पड़ेगा, लेकिन मायके नहीं, डॉट सेंटर। टीबी कोई ऐसी बीमारी थोड़े ही है जो छुपाते फिरें। टीबी छूने, साथ खाना खाने या रहने से नहीं फैलती। टीबी मरीज को जरूरत है आपके प्यार की और डॉट्स के पूरे कोर्स की। टीबी से दूर रहें, टीबी के मरीज से नहीं। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
3: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 एफएम सुनो शारदा।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हो। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकल कर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हो। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन बी की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देते हैं। चलिए जानते हैं। सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉन वेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुना शारदा 90.8 FM
1: राम राम दोस्त राम सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम यानी कि कार्यक्रम के माध्यम से, जिसका नाम है कम्युनिटी कनेक्ट राबता। इसके अंतर्गत हम लोगों से राबता करते हैं, एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं। आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही खास विषय है। जी हाँ, हम घरेलू हिंसा के बारे में बात करेंगे। हम उस सब्जेक्ट को आज छुएंगे जिसके बारे में लोग बात करते भी हैं, नहीं भी करते, और बात करनी चाहिए। महिलाओं को अपने हक हुकूक के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि आपके राइट्स क्या हैं। शिक्षा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर दिक्कतें परेशानियां हैं तो हम कहाँ जाएं, किसी लॉयर से मिलें, और लॉ यानी कि कानून की पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो मुझे लगता है कि इस तरीके के जो प्रोग्राम्स हैं वो आप सुने तो निश्चित तौर पर इसका लाभ आपको मिलेगा। UGC हमसे क्या कह रहा है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। इसकी जो प्रासंगिकता है, जो कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं, कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा। हम बात

0: डिस्प्यूट्स के बारे में है। इसी संबंध में बात करने के लिए मेरे साथ एक एक्सपर्ट के तौर पर आप जुड़ रही हैं, जो कि हमेशा सुनो शारदा के लिए अपना बहुमूल्य समय निकालती रही हैं। आप हैं स्कूल ऑफ लॉ शारदा यूनिवर्सिटी फैमिली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लिनिक कोऑर्डिनेटर, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट प्रोफेसर आप हैं डॉक्टर रितु गौतम मैम। मैम सुनो शारदा 90.8 FM पर एक बार फिर से दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए।
0: कैसे हैं मैम आप?
1: I'm good. How are you?
0: I am fine. और मैं ईश्वर से कुशल क्षेम के साथ साथ एक दूसरे के लिए कामना करता हूँ कि हम दोनों स्वस्थ रहें, जहाँ भी खुश रहे। और हमने बड़ी खूबसूरत लाइनें सीखी हैं अपने हिंदुस्तान से कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो
1: हमारा जो लॉ है, जो लीगल सिस्टम है, वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी देता है फंडामेंटल राइट्स टू ऑल दी सिटीजन्स। ह्यूमन राइट वो बेसिक राइट हैं जो हर एक ह्यूमन बीइंग को मिलने चाहिए एंड विच इज़ गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आज जो हम टॉपिक जिस टॉपिक के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, वो उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है, जो है डोमेस्टिक वायलेंस, जो जस्ट कॉन्ट्ररी है टू दी विच इज़ वी कैन से इज़ द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो ये घरेलू हिंसा, जो मुझे लगता है आज के समाज में हर घर में कहीं ना कहीं हर परिवार में इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। कुछ लोग शेयर करते हैं, कुछ लोग नहीं शेयर करते हैं, बट मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस आपसे साझा करना चाहूँगी, जो केसेस हम डेली बेसिस पे जो हमारे पास आते हैं, जो हम जिनसे डील करते हैं, सो दैट ऐसे लोग जो इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उन्हें एक थोड़ी प्रेरणा मिल सके, उन्हें उत्साह मिल सके, उन्हें हम गाइड कर सके कि एक्चुअली उन्हें करना क्या है।
0: संक्षेप में मैडम ने आपको बता दिया कि किस सब्जेक्ट पर, किस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। अपने हक हुकूक की बातें होंगी और इशारा ये कि अपने अधिकारों को जानें। हम बात करेंगे अपने घर के माहौल के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, उस परिवेश में जहां आप उठते बैठते हैं दिक्कतें परेशानियां हो जाती हैं, उन परेशानियों से हम कैसे बचा कर रखें अपने आप को, उस हिंसा को हम नो कहें। हम बात करेंगे घरेलू हिंसा के बारे में और एक्सपर्ट के तौर पर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर रितु गौतम मैम। वक्त है यहाँ पर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर सुर शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सोनू शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और आज के दिन हम बात कर रहे हैं एक खास विषय पर, डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा के विषय में। और जाहिर सी बात है कि एक विषय बहुत संवेदनशील है, एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है। तो इसी संबंध में हमारे साथ हैं डॉक्टर ऋतु गौतम। आप स्कूल ऑफ लॉ शारदा यूनिवर्सिटी से आते हैं और जब मैं प्रोफाइल को पढ़ रहा था तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ, फैमिली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लिनिक कोऑर्डिनेटर रन करते हैं। तो मैम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर।
0: ये जो इतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ आप चल रहे हैं तो आपको खुद को ही तनाव हो जाता होगा कभी कभी तो।
1: नहीं सर, मुझे लगता है कि इससे मुझे खुद पर्सनली भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। जब इतना तरह के डिस्प्यूट, नेगेटिविटी, प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें देखते हैं तो कहीं ना कहीं फील हमें पता लगता है, यू नो, हर एक चीज़ हमें सिखाती है दो चीज़ें, डूज एंड डोंट्स, क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है। तो समवेयर हम ये भी सीखते हैं कि हमें अपनी लाइफ में क्या नहीं करना है, अपनी फैमिली को कैसे सेव करना है, और एक जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं फील करते हैं कि अगर हम खुद ही नहीं कर पाएंगे तो हम दूसरों को क्या सीख देंगे।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जिम्मेदारियों से नहीं भागना चाहिए। जिम्मेदारियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं और जब हम जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं तभी किसी विषय पर हम बात कर पाते हैं। आज का जो विषय है वो है घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस। इसके बारे में हमने देखा है कि कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बातें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं और इतना क्लेश हो जाता है कि कभी कभी तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। तो घरेलू हिंसा को आप हमारे लिसनर्स को कैसे समझाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं?
1: राइट, जब हम कहते हैं घरेलू हिंसा तो जनरली प्रिज्यूम किया जाता है फिजिकल वायलेंस, वेयर एज फिजिकल वायलेंस इज जस्ट द पार्ट ऑफ द पिक्चर, वो सिर्फ एक पहलू है। तो वायलेंस कई तरह का होता है, इट कैन बी फिजिकल वायलेंस, इट कैन बी इमोशनल वायलेंस, इट कैन बी वर्बल एब्यूज, इट कैन बी फाइनेंशियल एब्यूज, इट कैन बी सेक्सुअल एब्यूज, और nowadays in this digital era, digital abuse is also very prominent. So social isolation is also kind of a violence, right? तो वॉयलेंस के डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट प्रकार हैं, और सिर्फ फिजिकल वॉयलेंस ही वॉयलेंस नहीं होता। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया डिजिटल वॉयलेंस का, जो कि एक न्यू फॉर्म ऑफ वॉयलेंस है। बिकॉज देखिए, हम सब एक सिटीजन होने के साथ एक नेटिजन भी हैं। हम सभी की एक डिजिटल लाइफ है सेपरेट, जहाँ पे आप आपके फेसबुक अकाउंट, आप इंस्टा अकाउंट, वहाँ पे एक आप डिफरेंट पर्सन है, आपकी एक अपना, यू नो, आप अगर कंटेंट क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, और यू नो, तो आपका एक डिफरेंट आइडेंटिटी, डिफरेंट एक वर्ल्ड है वो, वी कैन से दैट। तो वो आपके लिए बहुत मैटर करता है। आज के टाइम पे हार्डली कोई ऐसा पर्सन है जिसे जो सोशल मीडिया से जुड़ा ना हो। तो ये इस तरह के केसेस भी अब हमारे पास काफ़ी आने लगे हैं, जहाँ पे हस्बैंड को या वाइफ को इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि
0: ये इस तरह रही है।
1: अक्सर इस तरह पे प्रॉब्लम होती है कि ये वीडियो बनाती है, वीडियो में ये इस तरह का कंटेंट डालती है, या ये इस तरह के गाने हैं, हमारे घर में नहीं चलते, ये उस तरह की थोड़ा ये वल्गर है, या लेट्स से कि ये चैटिंग करती है, या इसने किसी को DM किया या बात की। तो लड़के और लड़की दोनों ही तरफ से, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं एक दोहरी जिंदगी जी रहे हैं, एक फिजिकल अपनी लाइफ में हम शायद कुछ और हैं और सोशल मीडिया पे
0: कुछ और,
1: कुछ और मल्टीपल अकाउंट्स के साथ। तो एक ये भी आज की डेट में हम लोग देखते हैं कि ये भी एक टाइप की हिंसा ही है, और इससे जुड़े हुए मामले भी आजकल काफी देखने को मिलते हैं।
0: लिसनर्स, मैडम ने एक तरफ इशारा कर दिया है कि रील के चक्कर में आप ना पढ़ें, अगर कुछ आप अच्छा कर रहे हैं जो कि समाज के हित में है तो मुझे लगता है कि कहीं कोई आपको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ रील बना रहे हैं, घर की जिम्मेदारियों से हम दूर हैं, भाग रहे हैं, तो डिस्प्यूट्स हो ही जाते हैं, क्लेश हो ही जाती है। समस्या है तो समाधान है, इस समस्या से हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें, क्या वो कारण है, कौन कौन से वो एक्ट हैं जो कि एक महिला के लिए है, पुरुष के लिए है, इसके बारे में हम जरूर जानेंगे। वक्त है यहाँ पर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर सुर शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। मेरे साथ एक एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ी हुई हैं, आप हैं डॉक्टर रितु गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, फैमिली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लिनिक कोऑर्डिनेटर, स्कूल ऑफ लॉ शारदा यूनिवर्सिटी से आप आते हैं। और जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, आज के दिन हमने विषय चुना है घरेलू हिंसा, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वो कौन कौन से रीजंस हैं मैम जिसके बारे में ये समस्या हमारे सामने आती है, घरेलू हिंसा के जो कारण हैं उसको हम डिटेल में आपसे समझना चाहते हैं।
1: देखिए, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अभी तक हमने अप्रोक्सीमेटली 1500 मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स रिजॉल्व किए हैं अपने सेंटर में, जो कि हम पिछले 6 साल से रन कर रहे हैं। यहाँ पे कारण भी डिफर करता है सोसाइटी टू सोसाइटी। मीन्स ये जो एरिया है, स्पेशली ग्रेटर नोएडा की अगर हम बात करें, तो यहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी मिक्स पॉपुलेशन है। यहाँ हाईली एजुकेटेड एमएनसी में काम करने वाले लोग भी हैं, जहाँ दोनों हस्बैंड एंड वाइफ वर्किंग हैं, और यहाँ एकदम ग्रामीण बैकग्राउंड से आने वाले लोग जो कि आसपास के लोकल एरिया से हैं वो लोग भी हैं, जहाँ जनरली औरतें घर में ही रहती हैं, हाउसवाइफ ही होती हैं। और यहाँ एक और मैंने कल्चर देखा है कि जहाँ पे लड़कों की बहुत यंग एज में शादी हो जाती है, तो दोनों ही काफ़ी यंग होते हैं और वहाँ लड़का भी काम नहीं कर रहा है और शायद लड़की भी नहीं कर रही है, और एक फैमिली पे डिपेंडेंसी है। तो दोनों ही सिचुएशन बहुत अलग सिचुएशन है, और हर सिचुएशन में कारण बहुत अलग अलग होते हैं। हर केस एक डिफरेंट केस है, हम ये कंपेयर नहीं कर सकते। बट मैं कुछ कॉमन रीजंस हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जिसमें से सबसे बड़ा मुद्दा जो मुझे लगता है आज के समय पे है वो है डाउरी। दहेज उत्पीड़न, जो कि हम टिपिकली समझते हैं कि भाई ये फीमेल ही एक केस फाइल कर सकती है मेल के अगेंस्ट में, आपको मैं बताना चाहूँगी डाउरी और जनरली केसेस जो फाइल किए जाते हैं उसमें सबसे पहला एलिगेशन डाउरी का ही होता है।
0: जी जी, कि इन्होंने भी होता है तो वकील साहब खुद ज्ञान दे देते हैं। हाँ, कि दहेज प्रथा का आप एक आरोप लगा दीजिए।
1: राइट,

0: ये है बेसिकली ग्रीड जो डिफरेंट फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म होती रहती है, और यंगर जनरेशन को इफ दे वांट टू सेव देयर मैरिजेस, इफ दे वांट टू सेव दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, उन्हें ये सबसे बड़ा विकार है मेरी नजर में, जो एक लालच पैदा करता है दोनों ही पार्टीज में। देने वाला सोचता है जब मैंने दिया है तो मैं हक क्यों नहीं जमाऊंगा, और लेने वाला सोचता है कि भाई मैंने जो खर्चा किया है वो तो मैं वापस लूंगा ही। एक कीमत आप लगा रहे हो अपने ही बच्चे की, किस हद तक सही है ये, और जो कीमत दे रहा है फिर वो उस चीज पे हक जमाएगा। तो यहाँ ये एक सबसे बड़ा रीजन मेरी नजर में है। तो अगर हम इसे अगर साइड कर देते हैं, इस ग्रीड को अगर हम साइड कर देते हैं जो कि डाउरी के रूप में हमारी सोसाइटी में है, तो मुझे लगता है वहाँ वो एक फर्स्ट स्टेप होगा एक प्योर इंटेंशन के साथ मैरिज को स्टार्ट करने का। सेकंड रीजन मैं बताना चाहूंगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ये बहुत बड़ा रीजन है आज के टाइम में, और हर दूसरे तीसरे केस में हमें ये चीज देखने को मिलती है। उसके पीछे कई रीजंस हैं। उसके पीछे अगर सपोज मैरिज, और ऐसा नहीं है इररेस्पेक्टिव ऑफ अरेंज और लव मैरिज, ये दोनों ही प्रकार के मैरिजेस में काफी कॉमन रीजन हम लोग देखते हैं। रीजन क्या है? इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया, इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया, एक्सपोजर, लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी बिटवीन गर्ल एंड बॉयज आज के टाइम में, जहाँ पे अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो वो भी एक तरह से जुआ है। यू नेवर नो कि पर्सन क्या है, कैसा है, कितना ही आप देख लेंगे। स्पेशली जहाँ पे जो ग्रेटर नोएडा वाली लोकेलिटी है, जहाँ बहुत यंग जनरेशन में यू नो आप 18-20-22 साल के लड़के की आपने शादी कर दी, अब वो शादी के बाद ऑलरेडी जो हमारे ही यहाँ पे बच्चे हैं जिनके ऑलरेडी छोटे छोटे बच्चे भी हैं, अब वो यहाँ पे आ रहे हैं, उन्हें एक्सपोजर मिल रहा है, उनको देखने का नजरिया चेंज हो रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा रीजन है
1: जी।
0: उसी तरह से दूसरी तरफ अगर हम देखें जहाँ मैच्योर कपल है एकदम, और अपनी मर्जी से जो जिनका यू नो स्टैंडर्ड डिफरेंट है, उनकी उनके लिए लाइफ के मायने अलग हैं, लाइफ को जीने का तरीका अलग है, तो मुझे ऐसा लगता है लॉयल्टी लाइफ में और मैरिज में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि प्यार नहीं होगा फिर भी चल जाएगा, रिस्पेक्ट अगर नहीं है तो मैरिज नहीं चल सकती। तो ये सबसे बड़ा एक मुझे लगता है एक वार करती है सेल्फ रिस्पेक्ट के पर्सन की। और उसके बाद यू नो आप किसी को डिमीन कर रहे हो, और व्हेन यू आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स अदर पर्सन, आप किसी तीसरे पर्सन की तरफ इंक्लाइंड हो राइट, तो वहाँ आप ऑब्वियसली जब एक पर्सन से आप फेथफुल नहीं हो तो वो उस चीज़ को भांप जाएगा, उसको समझ में आएगा। और ये जो चीज़ है फिर धीमे धीमे डिसलाइकिंग में, वो डिसलाइकिंग कहीं ना कहीं हेटरेट में, वो हेटरेट कहीं ना कहीं एक बहुत गंदा रूप ले लेती है।
1: आप तो, कह सकते हैं उस बात को खुल के कह सकते हैं कि कभी कभी हमने ये देखा है कि एक दूसरे की जान तक ले लेते हैं और एक ताना बाना बुनने की कोशिश करते हैं, वो खुद ना सामने आके पीछे से वार करने की भी कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से मैम इशारा कर रही है, इस बात को आप जानिए समझिए कि एक नाजुक संबंध है, वो डोर है, वो है प्यार की। अगर प्यार नहीं रहेगा, विश्वास नहीं रहेगा, तो ये दिक्कतें परेशानी आती चली जाती हैं। अगर पुराने समय को हम देखें तो निश्चित तौर पर दिक्कतें परेशानियां पहले भी थीं, लेकिन आपस में सलाह मशवरा करके बड़े बुजुर्गों को बीच में लेकर उस समस्या का समाधान ढूंढा जाता था। आप क्षण भर ये भी सोचें कि घर बिगड़ जाता है, देसी भाषा में मैम जिसे कहते हैं कि बच्चे बिखर जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, छोटी सी जॉब्स होती हैं हमारी, छोटी सी दुनिया होती है, वो जब बिखरती है तो दिल बहुत दुखता है। ये कुछ ऐसे तमाम कारण हैं जिसके बारे में मैडम ने यहाँ रोशनी डाली है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार कुछ और बातें करेंगे, बात करेंगे अधिनियम, कुछ एक्ट्स के बारे में, पुरुष के एक्ट क्या हैं, लॉ क्या कहता है, महिला के लिए लॉ क्या कहता है, इसके बारे में जानेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर सुरशादा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरुशादा 90.8 एफएम विद मी मेरियानी गगन के साथ। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, विषय है, सब्जेक्ट है डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा। हम ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि कभी घर में किसी के बर्तन न खटके, क्योंकि दिल दुखता है, समय खराब होता है, माहौल खराब होता है और खुद के घर में भी अगर दिक्कतें परेशानियां तो कहीं ना कहीं हम दूसरे पड़ोसी की नींद भी उड़ा रहे हैं, उसको भी परेशानी में डाल रहे हैं। अगर पड़ोसी ऐसा कर रहा है तो निश्चित तौर पर हम भी परेशान हो रहे हैं, है ना। चलिए डॉक्टर क्या कहते हैं, डॉक्टर रितु गौतम इस पर क्या रोशनी डालेंगी। मेरे साथ आप फैमिली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लिनिक कोऑर्डिनेटर हैं जो कि स्कूल ऑफ लॉ शारदा यूनिवर्सिटी से आप आती हैं। तो मैम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर। मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगी, ऐसे पेरेंट्स जिनके बीच जो सेपरेट हो रहे हैं और सेपरेशन भी आफ्टर यू नो बहुत हिंसा वॉयलेंस और लड़ाई झगड़ा और जिस तरह का यू नो एक बहुत ख़राब सिचुएशन है, और उस सिचुएशन को जो बच्चे देख रहे हैं और देखने के बाद उसमें वो बड़े हो रहे हैं, उसको देखते हुए उनकी मेंटेलिटी पे भी ये कहीं ना कहीं एक बहुत ख़राब इम्पैक्ट डालता है और कहीं ना कहीं उनका विश्वास टूट जाता है शादी से, शादी के बंधन से, प्यार से, इन चीज़ों से। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कहीं ना कहीं एक आप इससे तारुफ रखेंगे इस बात से भी कि हमने जो अपने पेरेंट्स को देखा है उनका उनकी जो जिस तरह से उन्होंने निभाया है उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी है, और आज की डेट में जो हम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट हमारे बच्चों के ऊपर भी आएगा। तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दोनों जनरेशन के टूवर्ड्स है, बट कहीं ना कहीं एक सोसाइटी के इस मझधार में लोग फंसे हुए हैं जहाँ एक तरफ एक सेल्फ है यानी कि वो क्या चाहते हैं, उनका एक लाइकिंग डिसलाइकिंग है, और दूसरी तरफ उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सभी जगह पे राइट्स एंड ड्यूटीज़ कम्स टुगेदर। हम सिर्फ अधिकारों के बारे में बात करेंगे और दायित्वों का निर्वाह नहीं करेंगे तो भी बैलेंस नहीं हो सकता। जैसे कि आज के टाइम में हम देखेंगे कि शादी करके लड़कियाँ बिल्कुल लड़की हैं या लड़के हैं, लड़कियों इसलिए बोल रही हूँ मैं क्योंकि लड़की जा रही है दूसरे घर में, तो जहाँ पे आप शादी करके गए हो आपको पता है कि इसने ये नहीं दिया, ये स्त्री धन है, ये मेरा राइट है, ये चीजें हैं, लेकिन आप पहले अपनी ड्यूटीज भी तो समझिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी लायबिलिटी क्या है। और ऐसा बोला गया है कि आप अगर पहले फोकस आपका लायबिलिटीज पे रहेगा तो आपके जो भी राइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं हम बैलेंस नहीं कर पाते अपने राइट्स एंड ड्यूटीज के बीच में, तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लीगल पॉइंट्स पे अगर बात करें तो लॉ ने हमारे पास काफ़ी सारी लॉज हैं जिन्होंने स्पेशल प्रोटेक्शन दिया हुआ है फीमेल्स के लिए भी और मेल्स के लिए भी। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, जनरली जब मेल्स आते हैं तो उन्हें लगता है कि यू नो सारा लॉज तो फीमेल सेंट्रिक है, मैम आप इन्हीं की सुनाएंगे, बट ऐसा नहीं है। एज अ मीडिएटर ये मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं एक न्यूट्रल अप्रोच रखूँ, क्योंकि अगर मेरा अप्रोच न्यूट्रल नहीं होगा और उनमें से कोई भी एक पक्ष ये फील करेगा कि हम बायस हैं तो वो कभी हम उनका मैटर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वो हो सकता है यहाँ ओके करके चले जाएं, बाद में फिर से फाइट करें। जो हमारा सक्सेस रेट है अभी तक का वो 90% का सक्सेस रेट है 1500 केसेस में, तो जो कि एक बहुत अच्छा सक्सेस रेट है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हम इक्वल वेटेज देते हैं दोनों पार्टीज़ को और इनको एक प्योर इंटेंशंस के साथ, उनको एक यू नो विदाउट एनी ग्रीड, विदाउट एनी बेनिफिट, हम उन्हें प्योरली गाइड करते हैं कि आपके लीगल राइट्स क्या हैं, प्रोविज़न क्या हैं, उन्हें सुनते भी हैं, समझाते भी हैं, उनको साइकोलॉजिकली भी उनका जो भी यू नो उनको रिक्वायरमेंट होती है उसको सुनने की, समझने की और ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। हमारा जो लॉ है, हमारा कानून है, किसी के लिए भी बायस नहीं है। यहाँ एक स्पेशल लॉ बनाया गया दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो कि महिलाओं के लिए है, वुमेन के लिए है, बट ऐसा नहीं है कि मेल मेंबर्स के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं है। मेल मेंबर्स के लिए भी प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि वी शुड ऑलवेज प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द वीकर सेक्शन, और महिलाओं को वीक ऐसा नहीं है, महिला वीक है, बट द थिंग इज जिस तरह से हमारा सोसाइटी है, कल्चर है, और जिस तरह से प्रथाएं हैं जहाँ पे, जैसे कि फीमेल्स ही जाती है मेल के घर, मेल फीमेल के घर नहीं आता है, तो जहाँ यहाँ पे जो वनरेबिलिटी है फीमेल की थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, दैट इज़ द रीज़न एक प्रोटेक्टिव लॉ बनाया गया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन। अब ये जो हमारा लॉ बना है ये फीमेल को प्रोटेक्ट करता है, ये क्रिमिनल लॉ नहीं है, ऐसा नहीं है अब डोमेस्टिक वायलेंस डीवी में आपने केस डाला तो वहाँ से आप सीधा पुलिस थाने ले जाया जाएगा या उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाएगा, बल्कि यहाँ इसका उद्देश्य है कि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, कोई भी फैमिली डिस्पोजेस ना करे, तो उनके जो रेजिडेंशियल राइट्स हैं उनको मेंटेन किया जा सके, और महिला को अगर मेंटेनेंस वगैरह नहीं मिल रही है तो वो दिलवाई जा सके। और एक और सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के को लेके कि ये सिर्फ वाइफ्स के लिए है, जो एक्ट है दैट इज़ फॉर वुमेन, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, और जिसमें वुमेन ऑफ ऑल categories are covered, not only wives, legally wedded wife, in fact जो live-in partners हैं उसमें भी जो female partners हैं उनके लिए भी ये act available है और remedy provide करता है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि male के against में ही डाला जा सकता है, in fact female के against में भी complaint file कर सकती है, यानी कि अगर mother-in-law या सिस्टर इन लॉ या कोई भी अगर और फीमेल मेंबर किसी भी तरह से घर में फिजिकली, मेंटली, इमोशनली किसी तरह से अब्यूज़ कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में भी डाला जा सकता है। बेसिक पर्पस इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का है कि फीमेल को सेफ्टी प्रोवाइड कराई जा सके, इसका पर्पस सेपरेट करना नहीं है। अदर देन दैट ऑल्सो हमारे पास काफ़ी प्रोविज़न है, जैसे कि जो हमारा करेंट BNS है भारतीय न्याय संहिता, उसके अंदर सेक्शन 85 है क्रुएलिटी को जो गवर्न करता है, और जो दोनों के लिए अवेलेबल है, मेल और फीमेल दोनों इसके अंदर फाइल कर सकते हैं केस, बट ये क्रिमिनल लॉ है। उसके अलावा डाउरी रिलेटेड ऑफेंसेस के लिए सेक्शन 86-89 ऑफ BNS वो डाउरी रिलेटेड ऑफेंसेस को गवर्न करता है, जिसमें डिमांड ऑफ डाउरी, हरेसमेंट फॉर डाउरी, डाउरी डेथ, ये सारे प्रोविजंस को कवर करते हैं। उसके अलावा मैट्रिमोनियल अगर ऑफेंसेस की, डिस्प्यूट्स की अगर हम बात करें तो सेक्शन 115 है जो असॉल्ट को गवर्न करता है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ स्त्री धन सेक्शन 316 वो उसे गवर्न करता है, और बहुत सारे जेंडर न्यूट्रल, यानी कि जो हमारा BNS है वो जेंडर न्यूट्रल है, यानी कि मेल और फीमेल कोई भी उसके अंदर केस दायर कर सकते हैं। और एक ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है जो कि फीमेल्स के प्रोटेक्शन के लिए स्पेशली है। थर्ड जो हमारा इम्पॉर्टेंट लॉ है टू डील विद दिस मैट्रिमोनियल मैटर्स, दैट इज़ हिंदू मैरिज एक्ट और अदर मुस्लिम मैरिज एक्ट एंड अदर लॉज। तो हिंदू मैरिज एक्ट में भी मेल एंड फीमेल एनी वन ऑफ द स्पाउस कैन फाइल अ केस, तो वो भी उसके अंदर में रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं।
0: वेरी गुड, बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में आपने हमारी जो लिसनर हैं, जो श्रोता हैं, उनको बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है, और मुझे लगता है कि लिसनर्स आपको जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्ट क्या है और वो एक्ट किसके लिए है, क्या मेरे लिए है या नहीं है, और ये एक्ट, इस एक्ट के अंतर्गत हम कंप्लेन किसी के खिलाफ दर्ज करा सकते हैं, जैसे कि बात हुई सासू माँ के खिलाफ, ननद के खिलाफ, अगर वो अत्याचार या परेशान कर रहे हैं, ये ध्यान देने वाली बात है, ये नहीं कि सिर्फ आप कंप्लेन कर दें, क्योंकि अक्सर हमने ये भी
1: और ऐसा नहीं है, सिर्फ महिलाएं, पुरुष भी करवा सकते हैं, ये सिर्फ एक एक्ट है जो स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए बना है, वो भी मैंने आपको बताया बिकॉज ऑफ द वल्नरेबिलिटी, राइट, और जैसा हमारा सोशल कस्टम है, अदरवाइज मेल्स के पास भी इक्वल राइट है, जो क्रुएलिटी है वो फीमेल, आपको मैं बताना चाहूँ जो हमारे लीडिंग केसेस हैं, जैसे दास्ता वर्सेस दास्ता, नवीन कोहली वर्सेस नीतू कोहली, ये बहुत लीडिंग केसेस आर रिलेटेड टू क्रुएलिटी, ये केस मेल्स ने फीमेल्स के अगेंस्ट में डाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि लॉ बायस है या सिर्फ फीमेल्स के लिए है, इक्वली मेल्स के राइट्स भी प्रोटेक्टेड है।
0: काम करता है कानून, पक्षपात नहीं करता, इसका भाव यही है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि प्यार जिंदगी का एक सार है, प्यार के साथ अगर हम रहेंगे, दिक्कतें परेशानियां किस घर में नहीं है, कहाँ नहीं है, हर जगह है। घर में टेंशन, ऑफिस में जाओ तो ऑफिस में बॉस की टेंशन, लेकिन समाधान खुद ढूंढना पड़ेगा, अदरवाइज हम अवसाद से ग्रसित हो जाएंगे, दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी, बीमार हम कहलाए जाएंगे, हमारे चेहरे की जो रौनक है वो दूर हो जाएगी। जिंदगी चलने का नाम है, आगे बढ़ने का नाम है, हम तो यही कहेंगे समस्या का समाधान ढूंढिए। वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और ब्रेक यानी कि बहुत जरूरी है। ऐसी अगर आप छोटा सा ब्रेक लेना चाहते हैं कि यार वो नाराज हो रही है बेगम साहब, तो आप चुप हो जाइए। जो जिंदगी का सार बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब वो कहते हैं तो मैं चुप हो जाती हूँ, मुझे लगता है कि ये समस्या का समाधान बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक ब्रेक, उसके बाद मैं आपको मिलूंगा ही। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुरशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और आज हम जिस सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं घरेलू हिंसा के बारे में और इसके जो रीजंस हैं उसके बारे में जाना, एक्ट क्या है, एक्ट किसके लिए है इसके बारे में जाना, और एक्ट का दुरुपयोग ना हो ये आप उसकी मर्यादा को जरूर जानिएगा समझिएगा। कुछ केसेस के बारे में मैम आपने हमें बताया। लिसनर्स, मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, मेरे साथ एक्सपर्ट के तौर पर आप जुड़ी हुई हैं डॉक्टर रितु गौतम, जो कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, फैमिली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, क्लिनिक कोऑर्डिनेटर, स्कूल ऑफ लॉ शारदा यूनिवर्सिटी से आप आती हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिसेंटली केस हमने देखा है, जो सुना है, स्मृति मंदाना वाला, पलाश मुचल वाला, जो वैवाहिक संबंध विच्छेद हो गया। क्या लगता है इस विषय पर आप, ये जो केस स्टडीज है, बीइंग अ लॉयर, आप किस तरीके से उस केस को पढ़ती हैं, समझती हैं, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, मैं अपना पर्सनल व्यू इस पे शेयर करना चाहूंगी। मुझे ऐसा लगता है इट इज ऑलवेज बेटर देन यू नो टू लेट, क्योंकि हम लोग क्या कई बार देखा गया है कि शादी होने से पहले भी हमें काफी अलार्म्स मिलते हैं। हमें लगता है कि नहीं, चीज़ें ठीक नहीं है, ये जो हो रहा है वो सिचुएशन ठीक नहीं है, बट बिकॉज ऑफ दी सोशल प्रेशर कि हमने कार्ड बांट दिए हैं, हमने वेन्यू बुक कर दिया है, हमने ये कर दिया है, उसकी वजह से हम मजबूरन और ना चाहते हुए भी उसमें जुड़ जाते हैं। एक इसी तरह का केस हमारे पास आया था। इस केस में मतलब जैसे उस फीमेल ने पूरा अपना डिटेल, सारी डिटेल्स बताई, तो जिस टाइम पे लड़की को मेहंदी लगी हुई है और हल्दी लगी हुई है और घर से निकलना मना है, अब ये इस लड़की के परिवार में क्या था कि इस लड़की की ही जॉब सबसे अच्छी थी, फादर वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग एज सच, भाई छोटा था, माँ डिपेंडेंट थी, इस लड़की की ही जॉब सबसे अच्छी थी। तो देखिए, एक लड़की शादी कर रही है और अपनी शादी के लिए दहेज भी खुद दे रही है, और दहेज में भी जो भी उनका अमाउंट तय हुआ था उसमें से कुछ 10-12 जो भी जा चुके थे और कुछ पर्टिकुलर अमाउंट बचा हुआ था जो देना था, तो इन्होंने बोला कि मैं कल शादी से पहले कल दे देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। उन्होंने बोला नहीं, उन्हें लगा कि भाई शादी हो गई, एक बार तो पता नहीं मिले या ना मिले। उन्होंने कहा नहीं, अभी दीजिए। और ये मेहंदी लगे हुए, हल्दी लगे हुए इस कंडीशन में एटीएम तक गई है और कैश विड्रॉ करके लाई और इसने कैश दिया है। आप ये सोचिए, उस टाइम पे भी कई बार ये फील हुआ कि ये सही नहीं है। ये इतना जो लोग लालच कर सकते हैं, जो इस तरह से अगर डिमांड रख सकते हैं
0: अभी शादी से पहले,
1: ठीक, पहले में क्या होगा? बाद में क्या होगा
0: जी?
1: और हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लड़की या लड़के, जो जिन्हें सिग्नल सारे होते हैं, जिन्हें लगता है कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, उसके बाद भी क्योंकि हम सोसाइटी के प्रेशर में, हमारे माँ बाप का पैसा खर्च हो गया है, हमने वेन्यू बुक कर दिया है और हम अपना सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर कर चुके हैं, इसलिए उसको लेट गो कर देते हैं। ये जो आपने केस पूछा, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट हर कि उन्होंने इतना बड़ा कॉल लिया। और बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़के ऐसे होते हैं, नहीं ले पाते और मजबूरन जानते बूझते कि उस तरह का कोई रिलेशन उसका मिल गया या कहीं और इन्वॉल्व है और शादी कर ली फिर भी, और दूसरे ही दिन से या फिर थोड़े टाइम में उनको कॉन्सिक्वेंसेस दिखने लग जाते हैं। तो इस तरह से मुझे ऐसा लगता है आज की जो जनरेशन है, जो यंगर जनरेशन है, वो हम सबसे थोड़ी ज़्यादा समझदार है और अवेयर है। एंड आई थिंक एवरीबडी शुड लिसन टू देम सेल्फ कि अगर उन्हें कहीं भी कोई डाउट लग रहा है, कोई भी चीज़ खराब लग रही है, कोई भी चीज़ कहीं
0: हिम्मत दिखानी पड़ेगी,
1: पड़ेगी लेना तो मुझे, मैं उसकी हिम्मत की दाद देना चाहती हूँ। और आई रियली अप्रिशिएट इस टाइप के, एटलीस्ट उन्होंने डिस्पाइट इतना सब कुछ शेयर हो गया है उसके बाद भी एक्शन लिया।
0: वेरी गुड मैम, आपने एक मैसेज दे दिया है सोसाइटी को, लिसनर्स को या आम जन को, अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी है अपने मन से बात करिए, अपनी फैमिली से बात करिए। और जब आप बड़ों की सलाह लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक सलाह जो मिलती है वो बहुत ज़रूरी है। और यहाँ ज़रूरी ये है कि अच्छे एडवाइज़र, जिसको कहते हैं कि अच्छे सलाहकार होना बहुत ज़रूरी है, तो कहीं ना कहीं बातें सद जाती हैं। और जिस तरीके से मैम ने कहा कि पहले डिसीजन ले लिया, पहले स्टेप ले लिया, पहले कॉल ले लिया और वो शादी टूट गई वक्त रहते हुए, अदरवाइज बाद में जब पता चलता कि दिक्कतें परेशानियां बहुत ज्यादा हैं तो दिक्कतें और ज्यादा बढ़ सकती थी। तो
1: ये जो एडवाइजर्स हैं मुझे, क्योंकि देखिए हर एक इंसान
0: जी
1: जो किसी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, हम अपनी जो चाहे हमारी खुशी है या दुख है, हाँ, हम किसी ना किसी के साथ शेयर करते हैं। हमारा एडवाइजर कौन है, हम किसके साथ शेयर कर रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है.
0: मैटर करता है, राइट.
1: आप किसी ऐसे बंदे के साथ शेयर कर रहे हैं जो खुद बहुत नेगेटिव है, बिटर एक्सपीरियंस से आया है, वो आपको नेगेटिव एडवाइस ही देगा.
0: राइट.
1: तो आप अपना जो पार्टनर है, जो भी पर्सन है, जो मेंटोर है, जो एडवाइजर है, उसको बहुत सोच समझ के सेलेक्ट करिए. अदरवाइज किसी थर्ड न्यूट्रल पर्सन से बात करिए, क्योंकि जो पहले आपने बोला रोल प्ले करते थे पेरेंट्स, आज के टाइम में वो पेरेंट्स का रोल भी काफी बायस्ड है. रीजन बीइंग, जो पहले हमारे 3-4-5 बच्चे होते थे, जॉइंट फैमिली होती थी, तो चाचा नहीं तो ताया, ताया नहीं तो दादा, कोई ना कोई एक समझदार व्यक्ति होता था. बट आज के समय में क्या है, एक ही बच्चा है, वहां पे आप बायस्ड हैं अपने बच्चे की टूवर्ड्स पूरा, आपको उसकी कोई बुराइयां ही नहीं दिख रही हैं, तो आप उसको कभी समझा ही नहीं पाएंगे और ना आप दूसरे व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाएंगे. तो इसके लिए बहुत जरूरी है, अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप उस समझदार व्यक्ति की तलाश करें अपने आसपास जो आपको सही सलाह दे सके और सिर्फ आपको नेगेटिविटी ना दे. क्योंकि लोग हर इंसान अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे शेयर करता है, और वो इंसान जो सिर्फ बिटर एक्सपीरियंस से होके आया है, वो आपको कभी पॉजिटिव एडवाइस नहीं देगा, वो बिटर ही देगा.
0: तो कहने का मतलब सिर्फ ये कि सलाहकार कौन है, एडवाइजर कौन है, कहीं वो आपके जज्बातों के साथ खेल तो नहीं रहा, आपकी भावनाओं का मजाक तो नहीं उड़ा रहा. उसी व्यक्ति के साथ मन की बातें साझा कीजिएगा जो आपकी बात को सुने, समझे और एक अच्छी एडवाइस आपको दे. वक्त का इशारा हो चुका है, मुझे अनुमति लेनी होगी. वक्त कभी किसी के लिए नहीं ठहरता, इसलिए वक्त पर सारे काम करेंगे तो निश्चित तौर पर सब अच्छा होगा, बेहतर होगा. मैम, आपने वक्त निकालकर मुझे वक्त दिया, हमारे श्रोताओं को समय दिया, दिल की गहराइयों से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ.
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे बुलाने के लिए.
0: सो लिसनर्स, बस इस प्रोग्राम को जरूर सुने, समझे. आशा करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा. अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी है तो 01204060205 पर आप हमें कॉल करेंगे. आपका कोई सवाल होगा तो हम मैम तक पहुंचाएंगे, मैम के जरिए हम आप तक वो बातें पहुंचा ही देंगे. वक्त का इशारा, मैं होता हूं 9:11. और बस जाते जाते हमेशा की तरह ही कहना चाहता हूं कि ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत. जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए. और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ. मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार.

0: लेकिन दोस्त अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ।
1: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
2: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूं, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
3: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
4: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
3: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
0: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
6: बिल्कुल सोचा है पापा।
5: क्या सोचा है?
6: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
5: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
6: जी पापा।
5: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
6: हाँ पापा बिल्कुल।
7: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
8: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती रहेगी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि खराब से खराब डाइजेशन को एक दिन में सुधार देंगे, यानी कि ये पांच जूस। वो कौन कौन से पांच जूस हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और जूस पीने का सही तरीका भी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। खराब डाइजेशन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए पांच हेल्दी जूस जरूर पिएं। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन, मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में। तो बात सामने आती है कि अदरक का जूस एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। अब इसे छानकर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है, इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: लेकिन दोस्त अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
3: नाम तो सुना ही होगा।
4: राम राम दोस्त, राम सत श्री अकाल। यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये आवाज आपने सुनी ही होगी। मेरा नाम है गगन। सुबह से लेकर शाम तक मैं रहता हूँ आपके साथ, लेकिन एक ऐसी शख्सियत से आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जिसका नाम अक्सर आपने सुना है, जिसकी आवाज से आपका दिन बन जाता है या यूं कहें कि रातें बन जाती हैं। सो लिसनर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरजे साइमा, रेडियो मिर्ची की बड़ी फेमस आरजे, पुरानी जींस लेकर आती हैं और रेडियो शो में पुरानी हिंदी फिल्मों के गानों के साथ साथ दिलचस्प किस्से और शायरियां सुनाती हैं। जब इनसे मुलाकात हो तो मौके पर चौका मारना चाहिए और ऐसे मौके पर चौका मारा हमारी सहयोगी खुशबू ने। उनसे बात की एआई के विषय में। आइए, क्या बात हुई सुनते हैं आरजे साइमा को खुशबू के साथ।
5: आज हमारे साथ खूबसूरत आवाज के साथ साथ एक ओपिनियन रखने वाली आरजे मौजूद हैं, आरजे साइमा, जिन्हें किसी पहचान की तो जरूरत नहीं है, लेकिन एआई के दौर में रेडियो किस तरह से बदल रहा है आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बदल रहा है रेडियो एआई के बाद, कह रहे खत्म हो जाएगा, जॉब चली जाएगी, बहुत सारी सवाल हैं, आप इसे कैसे देखती?
6: मैं इसे देखती हूँ कि रेडियो बदल रहा है, हर दिन बदलता है, हर वक्त बदलता है, हर मोमेंट बदलता है, तो रेडियो भी बदलेगा और उसके बदलने में कोई बुराई नहीं है, अगर बेहतरी की तरफ बढ़े। इसका जो एक प्रॉमिस है, उसका जो एक वादा है, वो उससे कॉम्प्रोमाइज ना करे और उसमें हर वो नई चीज लाए जिससे जो सुनने वाला है वो मुतासर हो, वो उससे कनेक्ट करे। AI एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हमारे रेडियो एक्सपीरियंस को बेहतर कैसे करेगा, और मुझे यकीन है कि ये बेहतर करने के लिए ही आया है।
5: मैम, दौर बदला है, वक्त बदला है, हम बदलने के लिए और अडॉप्शन की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से आपकी आवाज को अगर कोई बदल कर कुछ और पेश कर दे तो ये कितना खौफनाक है और इसे कैसे देखते हैं आप?
6: हाँ, ये बहुत खौफनाक है और ये AI का एक फ्लिप साइड है जहाँ पे हमें एथिकल लॉज की जरूरत है, हमें रेगुलेशन की जरूरत है, हमें बहुत सारे कानून की जरूरत है ताकि इसी का दुरुपयोग ना किया जा सके। कोई भी टेक्नोलॉजी दोनों चीज लेकर आती है, वो आपके लिए फायदेमंद भी होती है, वो आपके लिए नुकसानदेह भी बन सकती है। मेरी आवाज को इस्तेमाल करके कोई अगर नफरत की कोई बात कहे तो मुझे खुशी सिर्फ एक बात की होगी कि जो लोग मेरे बारे में जानते हैं उनको पता है कि ऐसी बात मैं कभी कर नहीं सकती और मैं यहाँ हूँ उस बात को झुटलाने के लिए। लेकिन ये कानून आना बहुत जरूरी है कि कोई भी मुझसे बिना पूछे मेरी आवाज नहीं बन सकता और नहीं इस्तेमाल कर सकता।
5: आज के दौर को आप उस आवाज में क्या कहना चाहेंगी जहाँ पर एक स्टूडेंट आपको सुनता है, आपको एज अ इंस्पिरेशन देखता है और रेडियो को, क्योंकि डिजिटल दौर में रेडियो को इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी लाइन ब्लर हो रही है, तो मैं चाहूंगी कि आप उन स्टूडेंट से कुछ कहें जिनसे वो ब्लर लाइन के बीच अच्छे से कनेक्ट कर सके।
6: एक इंसान को, यू नो, व्हाट डू वी लव, जिंदगी के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है कि जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कि अगले पल क्या होगा एंड इससे हम इंटरेस्टेड रहते हैं, दिलचस्पी बनी रहती है। जो रेडियो मीडियम है ना, वो हमें बहुत आजाद करता है, एक तो वो दुनिया बनाने में जो हम बनाना चाहते हैं, उस चीज को देखने में और किस तरह से हमें देखना है, ये हमारे अंदर, ये हमारा राइट होता है। मैंने एक बात कही, अगर मैं सामने नहीं हूँ तो आपने मेरे एक्सप्रेशंस तो नहीं देखे, लेकिन वो

0: बात अब आप कैसे इमेजिन कर रहे हैं वो आपकी हो गई। तो रेडियो देने वाला मीडियम है। मैंने आपसे कोई बात अगर कही तो वो बात अब आपकी है। आप उसको कैसे सोचते हैं वो लिबर्टी आपके पास है, जो कि और मीडिया के पास नहीं है। वहाँ पे जो दिखता है वही है, आप बदल नहीं सकते।
1: बिल्कुल मैम, एक आखिरी सवाल आपसे है। एज अ रिसर्चर, कम्युनिटी रेडियो के अपने चैलेंजेस हैं। एज अ आरजे कैसे देखते हैं आप, क्योंकि बड़े चेहरे बड़े नाम कहानियां बदल जाती है, लेकिन कम्युनिटी छोटा सा प्रदेश उसकी चुनौतियां और उसकी सस्टेनेबिलिटी बदल जाती है, तो क्या कहेंगे इस पे?
0: मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो रेडियो का असल फॉर्म नहीं, बिकॉज रेडियो इम्पैक्ट का मीडियम होना चाहिए और कम्युनिटी रेडियो के पास वो आजादी है कि वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। और आज के दौर में हमें छोटे छोटे हिस्सों में अपनी आवाज को एक बेहतर अंजाम के लिए इस्तेमाल करना है। सो कम्युनिटी रेडियो आज जितना रेलेवेंट और आज जितना जरूरी है उतना कभी भी नहीं था।
2: भाई बिल्कुल सही कहा आरजे साइमा ने कि जिस तरीके से सामुदायिक रेडियो स्टेशन आज रेलेवेंट है इतना पहले कभी नहीं था। सामुदायिक रेडियो स्टेशन आपकी आवाज है, जन जन की आवाज है, और जन जन की आवाज को लाखों करोड़ों लोगों तक हम पहुंचा रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, ऐप के माध्यम से। इसीलिए कहूंगा कि सुरुशादा 90.8 FM के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। 01204060205 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मेल भी कर सकते हैं 90.8fm@sharda.ac.in पर। और अगर आपको लगता है कि एक मुलाकात जरूरी है तो शारदा विश्वविद्यालय के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं इन्हीं नंबर पर कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। आरजे साइमा के साथ जुड़ी रही हमारी खुशबू, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरो शारदा 90.8 FM।
3: Hi everyone, this is Dania Joshi and you're listening to Suno Sharda 90.8.

ट्यूबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी, पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी, तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेने पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है, जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है, गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं, तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए, तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखें, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखें कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है, सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: करना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ।
1: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
2: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। सर 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
3: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
4: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
3: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
0: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
6: बिल्कुल सोचा है पापा।
5: क्या सोचा है?
6: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
5: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
6: जी पापा।
5: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
6: हाँ पापा बिल्कुल।
7: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
8: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती रही। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि खराब से खराब डाइजेशन को एक दिन में सुधार देंगे, यानी कि ये पांच जूस। वो कौन कौन से पांच जूस हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और जूस पीने का सही तरीका भी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। खराब डाइजेशन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए पांच हेल्दी जूस जरूर पिएं। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन, मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में, तो बात सामने आती है कि अदरक का जूस एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है, अब इसे छानकर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है, इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: चलो, अब तुम लोगों ने बहुत

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Filmmaking एक creative field है, और यदि आप creative सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here.

0: भाई, भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
0: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: ताजा खबर, कमला के घर में चार औरतें चोरी छिपे घुस गईं। कमला जी, कौन थी औरतें?
2: अरे मेरी सहेलियाँ, वो आई थी पता करने मेरी मुन्नी की तंदुरुस्ती का राज।
1: क्या है राज?
2: 6 महीने पूरे होते ही पेट पूजा। रसोई में जो भी हो, जैसे दाल चावल ले लो, इसमें कोई भी साग सब्जी मिला के पकाओ, इनको मीस के गाढ़ा बनाओ, और अगर घी हो तो ऊपर से थोड़ा घी मिलाओ और बच्चे को खिलाओ, दिन में 3 बार 100 ग्राम की कटोरी में।
3: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: क्या आपको बुखार आ रहा है?
2: ये बुखार डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया का हो सकता है।
1: बुखार होने पर फौरन नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर दिखाएं।
2: सिर, हाथ, पांव और पेट पर सामान्य पानी की पट्टी रखें।
1: बुखार के दौरान पानी, शिकंजी, ताजी फलों का रस और नारियल पानी जैसे तरल पदार्थों का ज्यादा सेवन करें।
2: हल्के सूती कपड़े पहने और कमरे को ठंडा रखें।
1: डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई भी दवा का सेवन ना करें। झोला छाप चिकित्सकों से बचें।
2: संचारी रोग के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर
1: 1800-180-5145 पर कॉल कर सकते हैं।
2: याद रखना, बुखार में देरी
1: पड़ेगी भारी।
2: यूनिसेफ के सहयोग से सुरू शारदा 90.8 FM द्वारा ये जानकारी जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा विषय है, डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें। जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचें। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है, जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है। लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं, बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है, जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित, अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है, या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है, जो विष के कारण होती है। शरीर की नसों पर हमला करती है, इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है, तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: क्या आपको पता है जन्म के एक घंटे के अंदर नवजात शिशु को माँ का दूध पिलाना चाहिए। माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध नवजात शिशु को बीमारियों से बचाता है।
1: जन्म के बाद नवजात बच्चे को केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। उसे शहद, पानी, घुट्टी या अन्य कोई पेय या खाद्य पदार्थ बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से नवजात शिशु बीमार हो सकता है।
0: स्तनपान कराते समय मास्क तथा सैनिटाइजर या साबुन और पानी से हाथ की धुलाई जैसी कोविड उपयुक्त व्यवहारों का पालन करना मत भूलिएगा।
1: संक्रमित माता भी अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती हैं।
0: स्तनपान संबंधी अधिक जानकारी आप आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या नर्स दीदी से प्राप्त कर सकते हैं।
1: जब होगी सही देखभाल तभी तो आएगी खुशियां बेमिसाल।
0: शिशु की सही देखभाल से फर
1: पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 0120406010 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुनो शारदा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Papa कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University. Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: मेहरबा ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो, सिंगर म्यूजिक एंड लिरिक्स बाय आदित्य रेखाड़ी, म्यूजिक लाविटर मेहरबा, ओनली ऑन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
4: समुदाय की घनी जानकारी के

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुनो शारदा 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: सो वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर at Sharda University.

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: सुनो शारदा 90.8 FM। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: हेलो मेरे बेस्ट फ्रेंड टिंकू।
2: हेलो मेरी प्यारी दोस्त तारा।
1: अरे क्या हुआ टिंकू, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो?
2: ओ, मुझे बुखार हो गया है।
1: अब्बा, टिंकू को बुखार हो गया है? तो डॉक्टर ने क्या कहा टिंकू, क्यों हुआ बुखार?
2: पता नहीं, मैंने तो डॉक्टर को दिखाया ही नहीं है।
1: ओ नो नो नो नो नो टिंकू, बुखार में तेरी पड़ेगी भारी। और तुम तो ऐसी जगह रहते हो जहाँ मच्छर भी बहुत है, हो सकता है मच्छर के काटने से तुम्हें बुखार हुआ हो।
2: ओ हाँ, और कुछ दिन पहले मुझे मच्छरों ने काटा था।

0: अब मैं क्या करूं तारा?
1: क्या हुआ तारा?
2: आ जल्दी आओ अपना। टिंकू तुम घबराओ नहीं, सबसे पहले पापा मम्मी से कहो कि तुम्हें जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाए।
1: और हाँ, किसी झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं बेटा, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाना और बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी दवाई मत लेना। ओके? कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है, जिससे अपंगता या मृत्यु भी हो सकती है।
0: ठीक है, मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ। ओके अंकल, बाय बाय।
2: बाय टिंकू।
1: बाय बाय बेटा, टेक केयर।
2: तुम सब भी समझ गए ना?

0: जरूर जाना, जरूर जाना।
1: अगर नहीं समझे तो मैं आऊंगी करने बार, जैसे आई थी पिछली बार।
2: बिल्कुल नहीं, तारा है हमेशा तैयार, और ये मेरा आखिरी वार।
1: तुम जीती मैं हारी, तारा तुम हमेशा रखती हो पूरी तैयारी।
2: दोस्तों अब मच्छरों को हराने की बारी तुम्हारी, तो क्या टीम तारा है मच्छरों से लड़ने को पूरी तरह तैयार?
3: टीम तारा है तैयार।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: अरे भैया रामू।
3: हाँ भैया श्यामू।
2: बड़े ढीले ढीले लग रहे हो, क्या हाल?
3: अरे भैया श्यामू, हाल बेहाल है और ये पथरी का दर्द है, निकलवानी है और जेब भी खाली है।
2: बस इतनी सी बात? चल ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल मेरे साथ, जहाँ छोटी मोटी सर्जरी सिर्फ 2,500 और बड़ी सर्जरी सिर्फ 6,000 रुपए में हो रही है।
3: अच्छा तो भैया लेके चल, अभी चल।
2: तो अभी चलो।
4: अगर आप भी हैं ग्रामीण और गरीब तबके से, तो ग्रेटर नोएडा का शारदा अस्पताल दे रहा है अच्छे इलाज का वादा। छोटे ऑपरेशन के 2,500 और बड़े ऑपरेशन के मात्र 6,000 रुपए। मरीज को बस देना होगा इम्प्लांट और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सामान का खर्च। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।

0: भाई, भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह की बात हेल्थ की में आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में। यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये एक ऐसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है तो वही एक मासूम बच्चे की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
1: शारदा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत सही लाभ कही और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि आप जानते हैं, सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट मिलकर के एक स्वास्थ्य जन जागरूकता मुहिम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत सही लाभ कही, ताकि हमारे जो समुदाय के लोग हैं वो सब जागरूक रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने देश की तरक्की में अपना योगदान दें। और आप सभी जानते हैं इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में बीमारियां भी होती हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें हमें खाने चाहिए, कैसे बचना चाहिए, क्या बीमारियां हो सकती हैं, तो इन सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर आर के शर्मा जी, उनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। गर्मी का मौसम है, गर्मी पड़ रही है, चिलचिलाती धूप है, तो किस तरह से लोग अपना इस मौसम में ध्यान रखें?
2: इस मौसम में सबसे पहले ये है कि धूप में काम कम से कम करें, सुबह शाम ज़्यादा करें, धूप में सिर पर कपड़ा रख के चलें, पानी बोतल या साथ में इलेक्ट्रॉल ORS या जो भी चीज़ अवेलेबिलिटी हो, या घर से अपने एक छाछ, बेलपत्थर का जूस या जो भी जूस लेकर चल सकते हैं वो लेकर चलें साथ में, ताकि बीच में कहीं उसे पी सकें।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, गर्मी हो या मौसम खराब हो, जो काम करने वाले हैं उनको तो अपना काम करना ही है, जाना ही है।
2: काम बहुत जरूरी है, काम बिना तो कुछ नहीं है।
1: तो काम पर जो लोग जाते हैं, खास करके जो शारीरिक परिश्रम करते हैं, तो उनको कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए?
2: उनको यही सिर पर कपड़ा रखें हर समय
1: जी।
2: दूसरा ये कि कम से कम जो है, मतलब ऐसे ही समय यदि देखें बहुत ज्यादा चिलचिलाती धूप है, 2 घंटे का टाइम, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, उस समय थोड़ा सा जो है कम काम करें या रेस्ट।
1: और
2: सुबह बहुत जल्दी से काम कर सकते हैं, शाम को भी देर तक काम कर सकते हैं, उस समय थोड़ा ठंड रहती है, पैरी में जो है सब ज़्यादा परेशानी आती है।
1: तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो काम है उसको, जो मौसम ठंडा ठंडा होता है थोड़ा, तो उसी में निपटा दें, और जो धूप होती है
2: उसमें आराम करें,
1: उसमें आराम
2: वहाँ भी जगह मिल जाए, अपना लेबर है तो अपना कहीं पेड़ है कुछ है या शेड है, कहीं भी किसी तरह का जगह है उनको वहाँ पर अपना।
1: तो डॉक्टर साहब, ये तो बात रही कि धूप से गर्मी से कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, अब ये जो मौसम होता है ना, बीमारियां भी हो जाती हैं, तो कौन कौन सी बीमारियां ज़्यादा होती हैं इस मौसम में?
2: खास तौर से जो है आपको, एक तो उल्टी दस्त आते हैं, दूसरा बाजार का खाना पीना कहीं खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली तो गला खराब हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, उससे लूज मोशन हो जाते हैं, तो बचाव करें। बाजार का खाना कम से कम खाएं, ना खाएं तो अच्छा है, और यदि बहुत

0: उल्टी जब तक नहीं रुकेगी 10 बारे दवा भी नहीं पचेगी। तो सबसे पहले उसको उल्टी कंट्रोल करने के लिए लिक्विड आता है उल्टी के रोकने के लिए, उसके बाद ORS का पानी पिलाइए उसको। ORS का लिक्विड भी आता है रेडीमेड बना हुआ, और ORS का जो पैकेट घोल के बना सकते हैं। तीसरा, फिर उसको दस्त की दवा दें। कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटीबायोटिक देनी पड़ सकती है। इन्फेक्शन नहीं है पेट में ज़्यादा तो खाली जो है दूध मोसी के लिए तो टैबलेट वगैरह या लिक्विड में दे सकते।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि बहुत दूर दराज में कोई रहते हैं, मान लीजिए रात में ये दिक्कत हो गई, अब वो डॉक्टर साहब के पास जा नहीं सकते उस दौरान, तो उस दौरान वो क्या कुछ उपाय अपना सकते हैं?
0: घरेलू उपाय हैं, नमक चीनी का घोल ले सकते हैं। ORS तो लगभग गाँव आजकल सब जगह मिल जाता है, क्योंकि आशा आंगनबाड़ी के सबके पास में ORS रहता है, तो ORS का पानी तो पिला ही दें कम से कम, यदि और दवा भी नहीं मिलती है तो। और दवा मिल जाए आप, क्योंकि अब तो स्टोर भी काफ़ी लगभग हर गांव में एक आध कहीं ना कहीं स्टोर है, तो वहाँ से उल्टी की दवा तो ले ही सकती है।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी आप ORS की सिफारिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए क्या चीज़ है ये ORS?
0: ORS एक जीवन रक्षक घोल है
1: जी,
0: और खाली दस्त उल्टी के लिए नहीं है, ये किसी भी हीट स्ट्रोक में गर्मी के समय में, या आप तो देख रहे हैं कि हमें थकान भी हो रही है कहीं पर, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तब भी ORS का घोल देता काम।
1: तो कहने का मतलब आपका यही हो गया कि अगर मान लीजिए कोई हमें बीमारी भी नहीं है गर्मी के मौसम वाली,
0: तब भी उसको ले सकते हैं,
1: तब भी हम उसको ले सकते हैं। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है कि भाई हम अपने स्वस्थ रहें, तो किस तरह से उसकी दिनचर्या होनी चाहिए?
0: दिनचर्या तो यही कि सुबह जल्दी उठें
1: जी,
0: कुछ एक्सरसाइज व्यायाम अपना करें, काम भी करें लेकिन व्यायाम सबसे पहले है, ताकि इससे इसमें फुर्ती आ जाए। दूसरा, कम खाना और गम खाना, ये दोनों चीज़ साधन ऐसी है जिससे हमेशा स्वस्थ रहोगे, मन भी शांत रहेगा और शरीर भी ठीक रहेगा।
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, जो कार्यक्रम चल रहा सेहत सही लाभ कही, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: बहुत अच्छा है प्रोग्राम आपका ये, और इस चीज़ को जागरूकता के लिए जगह जगह इसको सुनाया जाए, बताया जाए, जो भी अच्छे आपके जो कहीं पर इस तरह की क्लिप मिलती है तो वो आपको जो बाहर उसको पब्लिक में सुनाएंगे।
1: आखिर में हमारे जो सुनने वाले हैं श्रोता हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे?
0: गर्मी से बचें, थोड़ा सा तंग हो सकता है जितना हो सकता है, ये नहीं कि काम बंद कर दें, बाहर का बाजार का खाना कम से कम खाएं, बहुत ही मजबूरी में बाहर का खाना खाएं, घरेलू लिक्विड जो लें, मट्ठा हो, कोई मैंगो का जो आजकल जैसे पना बना लेते हैं वो ले लो, बेल पत्थर का जूस ले लो, ORS का पानी ले लो, ये घर से लेकर चलें, और घर से एक बोतल पानी भी लेकर चलें उसमें।
1: बिल्कुल डॉक्टर RK शर्मा जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है रेडियो के माध्यम से, और हमारे जो सुनने वाले हैं समुदाय के लोग हैं ज़रूर आपकी बातों का ध्यान रखेंगे, और जो भी आपने बातें बताई हैं उनको अपने जीवन में अपनाएंगे। हमसे बात करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 एफएम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें।

ध्यान दीजिए, अलार्म बजाए। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को। सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 एफएम।
1: राम नाम दो सलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर एक खास संदेश मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन अच्छी बात यह है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज न करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएंगे और सही उपचार लेंगे तो यकीन मानिए कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसी अपडेट के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
1: सबको हाथ बटाना है, टीबी को मिटाना है. हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपाली. आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM. हम लोग स्मार्ट के सहयोग से एक अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं, टीबी हारेगा देश जीतेगा. स्मार्ट अपनी मुहिम में ये सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक टीबी रोगी का उपचार हो. अगर आपको टीबी है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, बस अपने नजदीकी अस्पताल जाएं और छाती का एक्सरे और बलगम की जांच कराएं और स्मार्ट की इस मुहिम में हमारा साथ दें.
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं. यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी. यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे. अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in.

0: चिकनगुनिया मलेरिया दिमागी बुखार से बचे की जान।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.
3: Vasudhaiv

0: भाई, भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
0: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
2: शारदा। ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए
3: ग्रामीण और गरीब तबके के मरीजों के लिए 500 बेड समर्पित किए हैं।
2: अब महंगे इलाज और दवाइयों से मिलेगा आपको छुटकारा,
3: क्योंकि सरकारी अस्पताल की तर्ज पर शारदा अस्पताल में आधारभूत जांचें, दवाइयां, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर की सलाह समेत सभी सुविधाएं मुफ्त दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
4: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
5: बिल्कुल सोचा है पापा।
4: क्या सोचा है?
5: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
4: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
5: जी पापा।
4: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
5: हाँ पापा बिल्कुल।
6: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
7: So where are you? The world is here at Sharda University.
8: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।